0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश और रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आहिं।
1: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 और 0242-460100।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: ஐரன் ஐரன் ஸ்டோர் ஹாலானி ஹோல்சேல் டிப்பு அ நேம் டு பி ட்ரஸ்டட்
1: சரியா கார்டர் டியர் எங்கள் சேனல்பட்டி லோஹி தர்வாசா சில்வர்ஜா சோங் சிமெண்ட் ரேத்தி கிரேஷ் ஐ ரங் வகைரா பாஜார் கா பாரிய دستیاب ஆயின்
0: ஹானே யச்சு மெஹ்ரான் ஐரன் ஸ்டோர் நஸ்த் பலோச் பெட்ரோல் பம்ப் நேஷனல் ஹைவே ஹாலானி
1: ராப்தே லாய ப்ரோப்ரைட்டர் குலாம் நபி முகல் 03003204372 ஐ 02424601000
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-51
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 03013992836

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खान साहब के चाहने वाले बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और पूरे मुल्क की जो उम्मीद है उसका महवर आज सुप्रीम कोर्ट है। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर पाकिस्तानी कौम और आइन और कानून के मुताबिक, कौम की ख्वाहिशात आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। जो तोहीन अदालत हुई है वो बिल्कुल वाजे है। अदालत का हुक्म बड़ा क्लियर था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना है, वहाँ उनकी एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट होनी है, यानी कि तशखीस भी होनी है और इलाज भी होना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते
2: पीटीआई बानिया जी अस्पताल मुंतकिली वाले हुक्म जी मुबैना भंजकड़ी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तोहीनी अदालत दरख्वास्त दाखिल। उजैर भंडारी सलमान अकरम राजा पारा दाखिल कयल दरख्वास्त में वजीर आजम शहबाज शरीफ कानून वाले वजीर आजम नजीर तारड़ सिद्ध समा वाले वजीर अता तारड़ के धुर बनाया हो। दरख्वास्त में जिम्मेवार खिलाफ तोहीन अदालत कार्रवाई हलायण, पीटीआई बानिया के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण ए संदस तबी मुआयनो कराने की इस्तदा दरख्वास्त में इस्तदा कई वही है। अदालती हुकूमत अमल न कंदड़न जिम्मेवार के जाती हैसियत में तलब कयो वे खेन तोहीन अदालत जो जिम्मेवार करार दई संदन खिलाफ कानून मूजिब कार्रवाई कई वे।

0: जो ये कैदी साहब जो हैं जिनके हवाले से ऑर्डर आया, ये जब वजीर आजम भी थे और बरसर इकदार थे तो ये बताते खुद लोगों की सेहत पर तंज करते थे, जुमले कसते थे। क्या उस ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ? जवाब है हाँ। क्या मुआयना कराया गया? जी कराया गया। क्या उनकी हमशीरा वहां मौजूद थी? जी मौजूद थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। अब कंटेंप्ट, एक कंटेंप्ट जरूर हुआ, वो कंटेंप्ट किसने किया और कैसे किया ये मैं आपको बताऊंगा कि आप सियासत नहीं करेंगे, फिर रस्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गई? और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना सियासत होगी इसके ऊपर, ना बयानबाजी होगी, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई, रुकावट भी खड़ी की, और इंतजामिया को जो हिदायत की गई थी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उसमें भी रखना डाला गया, तो ये वायलेशन और कंटेंप्ट किसने किया है ये पूरी कौम के सामने। तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक तो वह शाश बशाश हैं।
1: वफाकी हुकूमत पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिली वाले मामले ते तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट के हुकुम के भंज कड़ी जो जिम्मेवार करार दई छो। वफाकी वजीर अताड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे है ता शिफा इंटरनेशनल अस्पताल बारा टोलन की सूरत में मानू जमा कया वाया, पीटीआई जा मानू सिक्योरिटी रिस्क बणजी वाया, ते करे बानी के पिम्स अस्पताल नियो वयो। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल डॉक्टर मौजूद हुआ, छा सुप्रीम कोर्ट सेहत मामले ते सियासत करण का मना न कयो? प्रेस कॉन्फ्रेंस ए बयान दई अदालती हुकुम की भंजकड़ी कई वही, तो इन अदालत हुकूमत न पर पीटीआई बानी की भेण गर्भातिन पार्टी कई। अदालती हुकुम से अमल कंदे पीटीआई बानी जो तबी मुआयनो कराए वो, तबी मुआयने बाद पीटीआई बानी की भेण पिण मौजूद हुई। सेहत के मामले के सियासत वर न चाड़े वे। इस्लामाबाद इंतजामिया पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकली बाबा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म खिलाफ नजरसानी अपील जल्द बुधने लाय दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराई छी। दरख्वास्त में पीटीआई बानी की अडियाला जेल में निजी अस्पताल मुंतकिल मेडिकल पैनल जरिए संदस इलाज कराने वा हुक्म चैलेंज कया वया। वफाकी हुकूमत रावलपिंडी में छह महीन लाय फौज मुकर्र करण की मंजूरी दई छी। नोटिफिकेशन मूजिब रावलपिंडी में फौज मुकर्र करण की मंजूरी आइन के आर्टिकल 245 तहत डिनी वही। पाक फौज जो टिन कंपनियों छह महीन तीन रावलपिंडी मुकर्र होंद। जारी कल पदरे मूजिब फौज जिले इंतजामिया से गड अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखी। शहर के हसास हंधन आम रोडन रस्तन से सिक्योरिटी के इंतजाम के सरायतो बनाया वो। फौज मुकर्री की मंजूरी पंजाब के घरू खाते की दरख्वास्त डी वही।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-335-569।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी,
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GAFM 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385।

0: चलते हैं।
1: रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए, घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर, डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठणी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1000
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
3: न अदा
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे
3: अदा जल्दी कर मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
1: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
4: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खान साहब के चाहने वाले बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और पूरे मुल्क की जो उम्मीद है उसका महवर आज सुप्रीम कोर्ट है। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर पाकिस्तानी कौम और आईन और कानून के मुताबिक, कौम की ख्वाहिशात आईन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। जो तोहीन अदालत हुई है वो बिल्कुल वाजे है। अदालत का हुक्म बड़ा क्लियर था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना है, वहाँ उनकी एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट होनी है, यानी कि तशखीस भी होनी है और इलाज भी होना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक झूठा बयानिया बनाया गया कि रस्ते में कोई रश था, कोई सिक्योरिटी का मसला था। बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक गाड़ी स्टेट गर्द पुलिस का पहरा था, पूरा काफिला अडयाला से गया शिफा इंटरनेशनल। कोई रोक टोक नहीं थी, कोई बंदिश नहीं थी, कोई रश नहीं था, लेकिन उस गाड़ी में सिर्फ डॉक्टर फैसल सुल्तान को लेकर गए और फिर वो वापस भी आया काफिला। लिहाजा ये बयानिया मुकम्मल तौर पर जीता है कि तो ये एक सोची समझी साजिश थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, पाकिस्तानी कौम के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। उसके खिलाफ हम मुकदमा अदालत में भी लड़ेंगे और पाकिस्तानी कौम के साथ अदालत के बाहर भी लड़ेंगे। तो ये हमारी जद्दोजहद और आज जो हमने पिटिशन दाखिल की है उसी जद्दोजहद का हिस्सा है।
2: पीटीआई बानिया जी अस्पताल मुंतकली वाले हुकूमत की मुबैना भंजकड़ी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तोहीनी अदालत दरख्वास्त दाखिल। उजैर भंडारी सलमान अकरम राजा पारा दाखिल कल दरख्वास्त में वजीर अजम शहबाज शरीफ, कानून वाले वजीर आजम नजीर तारड़ और सुध समा वाले वजीर अता तारड़ के धुर बनाया वो। दरख्वास्त में जिम्मेवार खिलाफ तोहीनी अदालत कार्रवाई हलायण। पीटीआई बानिया के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करना संदस तबी मुआयनो कराने की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्तदा कई वही है तो अदालती हुकूमत अमल न कंदड़न जिम्मेवार के जाती हैसियत में तलब किया वे ए खेन तोहीनी अदालत जो जिम्मेवार करार दई संदन खिलाफ कानून मूजिब कार्रवाई कई वे।

0: कैदी साहब जो हैं जिनके हवाले से ऑर्डर आया, ये जब वजीर आजम भी थे और बरसर इकतदार थे तो ये बताते खुद लोगों की सेहत पर तंज करते थे, जुमले कसते थे। क्या उस ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ? जवाब है हाँ। क्या मुआयना कराया गया? जी कराया गया। क्या उनकी हमशीरा वहां मौजूद थी? जी मौजूद थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। अब कंटेम्प्ट, एक कंटेम्प्ट जरूर हुआ, वो कंटेम्प्ट किसने किया और कैसे किया ये मैं आपको बताऊंगा कि आप सियासत नहीं करेंगे फिर रस्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की गई। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना सियासत होगी इसके ऊपर, ना बयानबाजी होगी, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई, रुकावट भी खड़ी की और इंतजामिया को जो हिदायत की गई थी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है उसमें भी रखना डाला गया, तो ये वायलेशंस और कंटेम्प्ट किसने किया है ये पूरी कौम के सामने। तो जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक तो वह शाश-बशाश हैं।
1: वफाकी हुकूमत पीटीआई बानिया के अस्पताल मुंतकली वाले मामले ते तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भंज कड़ी जिम्मेवार करार दई छो। वफाकी वजीर अतातरर प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शिफा इंटरनेशनल अस्पताल बारा टोलन की सूरत में मानू जमा कया वया। पीटीआई जा मानू सिक्योरिटी रिस्क बणजी वया ते करे बानिया के पिम्स अस्पताल नियो वयो। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल आ डॉक्टर्स मौजूद हुआ, शाह सुप्रीम कोर्ट सेहत मामले ते सियासत करण का मना न कयो। प्रेस कॉन्फ्रेंस ए बयान दई अदालती हुक्म की भंज कड़ी कई वही, तो इन अदालत हुकूमत न पर पीटीआई बानिया की भेण घर भातिन ए पार्टी कई। अदालती हुक्म से अमल कंदे पीटीआई बानिया जो तिबी मुआयनो कराया वो। तिबी मुआयने वक्त पीटीआई बानिया की भेण पिण मौजूद हुई। सेहत के मामले के सियासत वर न चाड़े वे। इस्लामाबाद इंतजामिया पीटीआई बानिया के अस्पताल मुंतकली बाबा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म खिलाफ नजरसानी अपील जल्द बुधन लाय दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराई छी। दरख्वास्त में पीटीआई बानिया की अडेला जेल में निजी अस्पताल मुंतकली ए मेडिकल पैनल जरिए संदस इलाज कराने वाला हुक्म चैलेंज कया वया है। वफाकी हुकूमत रावलपिंडी में छहन महीन लाय फौज मुकर्र करण की मंजूरी दई छी। नोटिफिकेशन मूजिब रावलपिंडी में फौज मुकर्र करण की मंजूरी आइन के आर्टिकल 245 तहत दिनी वही। पाक फौज जो टिन कंपनी छहन महीन तई रावलपिंडी मुकर्र होंदियों। जारी कल पदराय मूजिब पाक फौज जिले इंतजामिया से गड अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखी। शहर के सास हंधन ए आम रोडन रस्तन से सिक्योरिटी के इंतजाम के असरायतो बनाया वेंदो। फौज मुकर्रे की मंजूरी पंजाब के घरू खाते की दरख्वास्त दिनी वही। पाकिस्तान ए मलेशिया जो दहशतगर्दी मंशा के रोकथाम ए इंसानी स्मगलिंग खिलाफ गडियल सहकार वधाइण ते इतफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के घरू वजीर सैफुद्दीन बिन इस्माइल की मुलाकात सिक्योरिटी के शोबे में सहकार वधाइण ते भी जोर भरियो वयो। सदर आसिफ जरदारी पाकिस्तान शहन की मलेशिया के मार्केट्स तई पहुंचाने ते जोर भरीदे चयो त मलेशिया चावर पटाटन कणक ए चावर की खुराक तलब मौजूद आए। घरू वजीर मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ, यचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
5: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
6: السلام علیکم ادا.
7: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
6: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا؟
8: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
6: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
7: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
8: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
9: 0301-399-2836.
10: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद से, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिला आसिम हुसैन आरई, 03073592120।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: कराची के मुख्तलिफ इलाक में अज सुबह का मुख्तलिफ रोड हादसन में अठ जना हयाती विञाए वेठा। सोल्जर बाजार मलीर आयशा मंजिल बिन कासिम टाउन बिन इलाक में रोड हादसा। ट्रैफिक पुलिस मूजिब कराची में हलंदड़ साल मुख्तलिफ रोड हादसन में 603 हयाती जया थ 7467 मानू जख्मी थे। हेवी ट्रैफिक हादसन में फोत थियल शहरन जो अंग 184 है। कराची के मुख्तलिफ इलाक में सुबह सवेर का हल्की हल्की बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार अज शाम रात देर तई बूंदाबांदी जो सिलसिलो जारी रहने जो इम्कान। मौसमियात खाते मूजिब कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहर में इंदड़ बिन डीह तई मौसम झुलाई रही। कोटड़ीजी में हथियारन के जोर से फुर मज़ामत नौजवान कत्ल वारसन पारा लाश रखी धरणो। हुसैनाबाद स्टॉप वट हथियार बदन नाकाबंदी करे ईंदड़ वींदड़ गाडियन का फुर कई। मज़ामत खेरपुर वासी फैसल भुट्टो मारजी वे संदस दोस्त जख्मी। वारसन पारा वाके वारे हंध लाश रखी धरणो। रोड ब्लॉक कातिल फौरी तौर गिरफ्तार करण जो मुतालबो। पीर जो गोठ वेझो बिन धुरन में जेड़ो फायरिंग। नौजवान कत्ल कोट पुलवारे इलाके में जागीरानी बिरादरी के बिन धुरन में हलंदड़ पुराने तकरार तां जेड़ो थी पियो। फायरिंग के नतीजे में नौजवान आसिफ अली जागीरानी मारजी वे। इतलात पुलिस वाके वारे हंध पहुंची नौजवान जो लाश अस्पताल मुंतकिल कयो। धुरन के जेड़े में इन वक्त ही 8 जना कत्ल थी चुका है। खोरवा लग मुर्गिन सा भरियल तेज रफ्तार गाड़ी धनार ए चैन ढगिन के चीबाटे मारे छो। बदीन सजावल रोड से हादसे में गोठ मूसा चांडियो वासी अब्दुल फताह चांडियो हयाती विञाए वेठो। हादसे सबब चार ढगियों भी मरी वयूं। ड्राइवर मौके ता फरार थी वियो। पुलिस गाड़ी तवील में वठी छी। पोती जो लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले कयो वयो। मड़ो घर पहुंचण ते कोहराम मची वियो। जरवार माइनर के मंगणहार पाड़े वटा 20 फुट घारो पानी घरन में दाखिल। इलाके वासन जो चवण है त आपाशी मलदारन के इतला दिन बावजूद इन वक्त ताई केर भी ना पहुतो। घारो फौरी तौर बंद कयो वजे।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-335-569।
2: अस्सलाम वालेकुम। अदा
3: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा
4: यार, आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड,
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।
4: खुश खबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अहिड़ी ताकत बणजी उभरियो जंहिं दुनिया खे हैरान करे छॾियो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सुभाणे खां 28 अगस्त ताईं बरतानिया जो सरकारी दौरो कंदो। परडे॒ही तर्जुमान मूजिब इसहाक़ डार बरतानवी परडे॒ही वज़ीरनि समेत ॿियनि आला अमलदारनि सां मुलाक़ातूं कंदो। मुलाक़ातुनि में सोमालिया में यरगमाल पाकिस्तान जो मामिलो उथारियो वेंदो। रावलपिंडी ऐं इस्लामाबाद में गुज़िरियल तेज़ बरसातुनि सबबि केतिरा ई इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया। रोड रस्ता पाणी हेठि केतिरनि ई इलाइक़नि में पाणी घरनि में दाख़िल थी वियो। मुल्तान, बनून, सवात ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि बरसाति। कराची में मौसम जुड़ाली, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बूंदाबांदीअ सबबि मौसम ख़ुशगवार।

आयशा मंजिल बिन कासिम टाउन ऐं ॿियनि इलाइक़नि में रोड हादसा। ट्रैफिक पुलिस मूजिबि कराचीअ में हलंदड़ साल मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 300 शहयातियूं ॼाए वेठा, जॾहिं त 7,467 माण्हू ज़ख़्मी थिया। हेवी ट्रैफिक हादसनि में फौत थियल शहरनि जो अंगु 184 आहे। कोटडीजीअ में हथियारनि जे ज़ोर ते फुर मज़ामत ते नौजवान क़तल, वारसनि पारां लाश रखी धरणो। हुसैनाबाद स्टाप वटि हथियारबंद नाकाबंदी करे ईंदड़ वींदड़ गाॾियुनि खां फुर कई। मज़ामत ते खेरपुर वासी नौजवान फैसल भुट्टो मारिजी वियो, संदसि दोस्त ज़ख़्मी। वारसनि पारां वाके वारे हंधि लाश रखी धरणो रोड ब्लॉक। कातिलनि जी फौरी गिरफ़्तारी करण जो मुतालबो। प्रियालो भरिसां कारे इल्ज़ाम हेठि नौजवान नारीअ पीउ था क़तल। जवाबदार फरार ॻोठ इमाम बख़्श नारे जो में जवाबदार आशिक नारे जो पंहिंजे धीउ शकीला खे क़तल करे छॾियो। इतलाह ते हद जी पुलिस वाके वारे हंधि पहुची लाश इस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। पीर जो ॻोठ वेझो ॿिन धुरनि में जहिड़ो फायरिंग, नौजवान क़तल। कोट पुल वारे इलाइक़े में जागीराणी बिरादरीअ जे ॿिन धुरनि में हलंदड़ पुराणे तकरार तां जहिड़ो थी पियो। फायरिंग जे नतीजे में नौजवान आसिफ अली जागीराणी मारिजी वियो। इतलाह ते पुलिस वाके वारे हंधि पहुची नौजवान जो लाश इस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। धुरनि में जहिड़े में हिन वक़्त ताईं 8 ॼणा क़तल थी चुका आहिनि।

0: जे वारसन जो कातलन जे गिरफ्तारी लाए लाश रखी एतजाज। नारी साजदा अमीरानी जे वारसन जवाबदारन जे गिरफ्तारी लाए एतजाज कयो। वारसन जो चवण आए त साजदा अमीरानी के संदस मुड़स अली हसन अमीरानी कतल कयो आए। घरू अणत भरत तां जवाबदार असांजे न्याणी के कतल कयो आए। पुलिस जवाबदारन जी साथारी बणियल आए। डीआईजी सखर एसएसपी सखर नोटिस वठी कातलन जी गिरफ्तारी करे। खोरवा अलग मुर्गिन सां भरियल तेज रफ्तार गाड़ी धनार ऐं चेन ढगिन खे चीभाटे मारे छॾियो। बदीन सजाल रोड ते हादसे में गोठ मूसा चांडियो वासी अब्दुल फताह चांडियो हयाती विञाए वेठो। हादसे सबब चार ढगियूं बि मरी वयूं। ड्राइवर मौके तां फरार थी वियो। पुलिस गाड़ी तवील में वठी छॾी। पोतीअ जो लाश ज़रूरी कारवाई बाद वारसनि हवाले कयो वियो। मर्ड घर पहुचण ते कोहराम मची वियो। ऐं जरवार माइनर खे मंगणहार पाड़े वटां 20 फुट घारो पाणी। घरनि में दाख़िल इलाइक़े वासियुनि जो चवण आहे त आपाशी अमलदारनि खे इतलाह ॾियण बावजूद हिन वक़्त ताईं केर बि न आहे पहुतो। घारो फौरी तौर ते बंदि कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मैरापुर असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं जॻह जा पावा ऐं पाइप 2 4 6 9 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301 54 4 56 ऐं तौकीर अहमद 0306 16 23 793।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे। सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर। सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
5: न अदा।
7: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। तमाम खूबसूरत मासूम ही सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। कुरकुरे दुआओं के समंदर, चाहतों की बारिश और आसमान खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नीचे जाकर जमीन से आसमान तक, जिंदगी से मौत तक, चांद से तारे तक, हमसे खुशी रख, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल ठीक, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती। हाँ जी जनाब, प्रोग्राम चलते के नाम मस्ती में आतमान तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समाज और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ जरा अपना भी तारफ करवाते हैं, सो लिसनर्स फॉर ऑलवेज टेकिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल जी, आप ये सिद्राव के साथ मौजूद हैं और यहाँ पर जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो तमाम तो लोग जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, अंधे की हालत उनके से ही आपकी हालत है, उम्मीदन शदीदन कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुबकुल मूड के साथ सुबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली है। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे तीन बजे तक, यानी कि दो घंटे हमारे पास मौजूद हो गए। इन दो घंटों में हम करने वाले हैं जी इतनी सारी बातें, तो इतनी सारी बातें तो तभी होंगी जब आपका साथ हमारे साथ मौजूद होगा। तो बिल्कुल जी, आपका साथ प्रोग्राम में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि आपकी वजह से हमारे प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। तो बिल्कुल जी, मेरे प्रोग्राम के चांद जरा हाजिर हो जाइए। और जो बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे। ऐसी बहुत सारी आंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाले गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला, बिकॉज आली रे आली सदर आली बोस आके होटो 440 सौ की समय लाने के लिए। तो बिल्कुल आगे होटो पे 440 सौ की समय लाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब एक बहुत ही खूबसूरत सी नाद के साथ, बहुत ही प्यारी सी नाद जनाब आप लोगों के लिए आगे से प्रोग्राम रखेंगे। और नाद के बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास आएंगे तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, प्रोग्राम जल्दी का नाम मस्ती।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 03-01-96-8-51
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03-01-380-8347
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94

जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम वस्ती और इसी के साथ साथ आप लोग हमारे साथ मौजूद है जनाब तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है बिल्कुल सी आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा है सवाल कुछ ये है कि आप मुझे बताएं कि अगर वाईफाई पासवर्ड फीलिंग से डिसाइड होता तो आपका पासवर्ड क्या होने वाला था इसी के साथ साथ बहुत ही ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होने वाला है जिसके ऊपर आप लोगों के मैसेजेस चाहिए मुझे बहुत ज्यादा वाले और अगर आप हमारे प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करेंगे तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए फेसबुक पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सके और हम खूब सारे मजे कर सके।

क्या बात है। और इसी के साथ साथ आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आपके मैसेजेस हैं जो जाहिर सी बात है शामिल प्रोग्राम रखे जाएंगे। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया जल्दी से कर दिया करें, आप ही लोगों का काम होता है। और इसके अलावा अब्दुल गफार भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, सलामत रहिए जी आप भी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। उनका अलावा हमारे साथ हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे टॉपिक अच्छा है लेकिन मेरे पास तो वाईफाई ही नहीं है, सो दुखी ये भी चीज है। और हाले सुल्तान कहते हैं नहीं नहीं आपके टॉपिक का जवाब दिया है, क्या बात है जी, फिर तो जबरदस्त हो गया। और चाचा कहते हैं माय डॉटर कुरत लेन एनी लाइक पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दैट्स व्हाई शी पुट दैट इन। अच्छा 2014 में स्टिल अञा ताईं तव्हां जो इहो ई पासवर्ड हले पियो, न कयो बाबा न कयो, पासवर्ड चेंज कंदा रहंदा माण्हुनि खे दप पइजी वेंदी आहे न, पोइ बसि हशर हूंदो आहे। अच्छा मोहम्मद मीरन जकरानी में सुन रहे हैं जेका बाबा से, आपको भी वेलकम कहा जाता है। और हिदायतुल्लाह आपकी पसंद का गाना लगाया जाएगा। जुल्फकार अली जकरानी हमारे साथ हैं जेकब आबाज से, और क्या कहते हैं प्रोग्राम पसंद है आपका, थैंक यू सो मच जी, आपकी मोहब्बतें हैं। और हैप्पी कहती हैं आज अगर वाईफाई का कनेक्शन फीलिंग से होता तो मैं हैप्पी पासवर्ड रखती क्योंकि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, तो इसलिए मैं हैप्पी पासवर्ड रखती। योर टॉपिक आंसर, ओके जी समझ गए हम। और मीर तारिक बलोच कहते हैं काफी टाइम का पोए वरी तमाजी प्रोग्राम में शामिल थी आए, थैंक यू सो मच, ताकि चौथा भली करी आया। अच्छा दिया कहती हैं कि मैं शामले प्रोग्राम कमी होती हूँ लेकिन मैंने आपको बताया था, मैं चुपके से आपका शो सुनती रहती हूँ। मास्टर मंजूर का कोई भी अच्छा सा गाना डेडिकेट अली मुर्तजा, चलो इंटर्न हो गया। वैसे अली मुर्तजा भी कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहे। और ये हमारे साथ एहसन अली अरबानी मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम, कहते ओ माई फेवरेट आर जी मैडम मुस्कान, कैसी हैं आप, मैं भी आ गया हूँ कुछ दिनों के बाद, आपको लगा होगा मैं नाराज हो गया हूँ लेकिन मैं मसरूफ था। नहीं नहीं आप मुझसे नाराज नहीं हो सकते कि आप अच्छे बच्चे वो जो लोग नाराज होते ना वो बता कर जाते हैं, हाँ जी मैं नाराज आया मामा वन्या में, तो वो माँ चंदिया सैया वो तो ना रिठो भलो पर चण खां पोसाईंदो कख जो थोरो कंदो वरी वतंदो गाईंदो। सो जेके नाराज़ थियण जी जंहिंखे घणी आदत हूंदी आहे न, ऐं हू हर ॻाल्हि ते नाराज़ थी वेंदा आहिनि माण्हू, उहे बस मां चवंदी आहियां ख़ुशि हुजनि ऐं साइड हुजनि, अहिड़ा माण्हू थोरो कुझु घटि पसंदि ईंदा आहिनि। और हिदायतुल्लाह कहते सिदरा कराची जैसे शहर में बिजली नहीं आती, बिजली वालों को कोई बताए कि हमें गर्मी की परवाह नहीं लेकिन मोबाइल चार्जिंग करने दो। असल त बाबा इहा ॻाल्हि हूंदी आहे गर्मी जी, हाणे कंहिंखे परवाह कोन्हे, बस फोन चार्ज हुजे बस, पोइ असां लाइ सभु कुझु आहे। कराची में भी बिजली सही नथी हले बाबा, पोइ इहो त सही ना है नी

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कर दी जाइए, टॉपिक को फॉलो कीजिए. और यहाँ पर सोफी वफा बलोच जिनके कारू झर नंगर पार से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं. मैं पासवर्ड रखता चले ही अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया. रशीद को समय सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम. आप जी हैदराबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया. दिया कहती है अली बहुत बिजी है वैसे, अच्छा ये हमें चांस मिल जाता है, यह भी गर्ल आए चले अच्छी बात है.

अच्छा जी, बातें तो सही थी, कोई मसले की बात ही नहीं. यहाँ पर आप प्रोग्राम सुन रहे हमारे साथ साथ हैं, और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, हाँ जी बताइए, अगर वाईफाई पासवर्ड आपकी फीलिंग से डिसाइड होता तो फिर आपका पासवर्ड क्या होने वाला था. एक और बहुत ही प्यारा सा गाना, जो कि भाई ये उमरानी की आवाज में गाना है, नया गाना आया है, तो मैंने सोचा चलो भाई एंजॉय करते हैं साथ में मिलकर.

हाली सुल्तान की थी मुर्शिद, इसकी जाना अभी तक क्यूट है, वही मैं सोच रही थी सदा बहार जाना है, सदा बहार अच्छा दिया के थी रियो में की माना पेट्रोल भराए जाना वर्डी विसरी वेंद सकी कहता है बाबा खोसो साहब के केर बुधाए अजकल सभी सिंधी गानन में जेन देंगे रिवो साइड इश्क थी वियो

साईं वाह पोस्ट के लाइक ऐं शेयर कंदा हलो उन खां अलावा असां सां गॾु मौजूदु आहे पठान खान भाउ पठान घोसो भाई कहते हैं रज़ा फकीर जो गानो बुधराईंदा तमां से जो पूरो मैसेज छो न पढ़ंदा आयो तमां जो पूरो मैसेज एतरो ही जेको मुखे मिलियो वो पढ़ी वरतो सी बाकी ही जेको आयो सजो पढ़ियो से जेको हाने ता मोकलियो आ मिरपुर खान से अब्दुल्ला माहर हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम बाजी शो नाइसा तमां जो सॉन्ग सुनाओ आपकी पसंद का चले डन हो गया और चाचा खालिद असां सां गॾु पैनल ते मौजूद आहे चाचा ठीक आहे मूंखे लॻो फेक अकाउंट हुयो ईअं मतिलबु ॿुधाए छॾींदा कयो ख़बर हुजे

अच्छा डॉक्टर हसीना सुमरो कहती थी असा अच्छा चली डॉक्टर साहबा तव्हां जेको गानो चयो आहे न बिल्कुलु तव्हांजो गानो हलाईंदासीं तव्हां उहो गानो चयो आहे जेको मूंखे बि वणंदो आहे सो तव्हांजो गानो बिल्कुलु ॿुधंदासीं रसूल पासी आबदुसीन चंबानी भाई वालेकुम अस्सलाम मेरा पासवर्ड नोट कीजिएगा गुस्से से आंखें मत दिखा और फिर मुस्कुरा देना अच्छा गुस्से से आंखें दिखाना और फिर मुस्कुरा देना इहो पासवर्ड हुजे आधे जो सही आहे बाबा सही आहे अच्छा घोट हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी का कुर्बानी खास के लिए भी असो प्रोग्राम बुधी पे भानजो मोबितू आए थैंक यू

मुझे क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है दिया केदी फनकार शायरी वरी असां जेड़ा बुधन जेड़ा वायरल करण जे लाइ वेठा आयो नी बिल्कुल या गाल आए सजो कम त असां जो आए अवाम के केड़ी चीज अट्रैक्ट करे थी अवाम केड़ी चीज दे पोया भदे थो या अगर एक दफो उन मानू के खबर पेजी वे ना जेको एड़े किस्म जी शायरी ठाए थो गाना ठाए थो त पो हन जो यो ट्रैक उन के मिली वेना त बाबा बस हने सा के केड़ो कम करनो आ सो सजो कम ओ वा अगलो उन के रिस्पांस केड़ो दे थो अगर ता मतलब अस सब मानू मिली करे उन चीज जे उन के रिपोर्ट कयो या वरी उन्हें जे चीज के अन्या रिपोस्ट न कयो उन जे लाए ब्या वीडियोस न ठायो त पो या चीज थोड़ो कंट्रोल अची सके थी पर आजकल डठो वनी त सोशल मीडिया ते हले एड़ो कुछ तो इन करे थोड़ो साइड हुंदा आयो

हुजे सभु चीज़ूं हिकु जॻह ते, पर असांजो फोन त असांजे हथ में आहे, उहा त चीज़ असांखे ख़बर आहे त असांखे छा ॾिसणु घुरिजे छा न ॾिसणु घुरिजे। हा हा, डांस करे हिदायत लाइ किसने मना किया आपको? हाले सुल्तान के लिए मुझे तो क्यूट जाना के सिवा कोई सॉन्ग समझ ही नहीं आया। ना करें भाई, सिंधी गाने लगा रही हूँ। अच्छा, अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, आपकी पसंद का गाना भी लगाया जाएगा। किशोर भाई कहते हैं सलाम अता सोरी अंख हाने खुलिया है। अच्छा, आज संडे यार, सही सही, सुकून कयो बाबा, सुकून कयो। उनके अलावा अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, आपकी पसंद का गाना भी लगाया जाएगा। किशोर भाई कहते हैं सलाम अता सोरी अंख हाने खुलिया है। अच्छा, आज संडे यार, सही सही, सुकून कयो बाबा, सुकून कयो। उनके अलावा तवां के चौथा भली करी आया प्रोग्राम में, तवां जो संजो साथ पूरे पूरे 3 बजे ताई हुंदो। आई ते टाइम थियो आहे न्यूज ब्रेक जो, नखा पोई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हुंदा। तवां करी न वंजो इते बैठा हो जो मां ओ ही वनी ओ ही मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। जल्दी का नाम मस्ती।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-46-0100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा?
2: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

उसके अलावा जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए, जिन लोगों ने अभी अभी हमारा प्रोग्राम सुना स्टार्ट किया था उन लोगों को आज के टॉपिक को जरा बता दे चले। तो आज मैंने आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह पूछा है कि आप मुझे बताएंगे कि अगर वाईफाई पासवर्ड आपकी फीलिंग से डिसाइड होता तो फिर आपका वाईफाई पासवर्ड क्या होने वाला था। क्योंकि अगर ऐसा होता वो खुद ब खुद आपकी फीलिंग्स को जो है ना डिटेक्ट करके वो पासवर्ड खुद ही बस हो जाता, तो आप बताएं आपका पासवर्ड क्या होने वाला था। और इसी के साथ साथ आप मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं 8881 पर और फेसबुक पर। तो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं फेसबुक को ज्यादा से ज्यादा जो है ना आपने लाइक और शेयर करना होता है वो ऐसे, क्योंकि जितना लाइक और शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, आपके बहुत ज्यादा वाले मैसेजेस हैं जिनको शामिल प्रोग्राम रखेंगे। और हाँ, आपकी अच्छी अच्छी पसंद पसंद के गाने भी हमारी लिस्ट में मौजूद हैं जिनको हम सुनते रहेंगे।

ओके जी, तो कहाँ थे भाईजान आके, हम जरा गानों की जानिब आ जाते क्योंकि आपकी पसंद के गाने जो हमारी लिस्ट में मौजूद है तो उनको भी जरा सुन लेते हैं। फायज़ अली के गाने की फरमाइश हमें ये आ चुकी है और ये डॉक्टर हसीना साहिबा ने हमें गाने की फरमाइश कर दी है। काफी दिनों से बोल रही थी कि ये वाला गाना सुना दे, तो डॉक्टर साहिबा ये गाना आपको डेडिकेट जाता है। आइए मिलकर इस गाने को जरा हम इंजॉय करेंगे और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ साथ, आपने इतने सारे मैसेजेस कर दिए हैं, सो थैंक यू।

ओके जी ओके डाढ़ो भलो गानो जो एंजॉय कदासी न खा अलावा हमारे साथ गुलाम अकबर खास के लिए कहते हैं तुझे याद हुई तारन जी रात हुई उस्ताद भी वसलाए सूरन जी रात हुई अस्सलाम वालेकुम सिदरा वालेकुम अस्सलाम प्रोग्राम में दिल सा भलीकार तवा के बिचंता दिल सा भलीकार आई मोहब्बत हूं एंड प्रोग्राम उधो पया कमर जमान बलोच हमारे साथ ये नुसरत फतेह अली खान का गाना लगाएगा बिल्कुल आपका गाना सुन लेते हैं थैंक यू आप हमारे साथ हैं और गोल्ड हमारे साथ हैं गोल्ड कहते हैं आई एम यासीन मिराली तालुका से हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया यासीन आपको वेलकम कहा जाता है और आबिद बिरोही हमारे साथ हैं नौशरो फिरोज से भाई कहते हैं सो गुड शो थैंक यू अच्छा अब्दुल्ला अली कहते हैं सिद्रा बाजी आप मेरे बाबा साईं का नाम क्यों नहीं लेती हैं अली गुलाब शर हमारे साथ है और बाजी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है थैंक यू वेरी मच भाई आप नाम लिखेंगे तो आपका बाबा साईं का नाम लेंगे बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं आप दोनों को वेलकम कहा जाता है

अच्छा नजर मोहम्मद भट्टी हमें सुन रहे हैं। नजर मोहम्मद भट्टी भाई कहते हैं लाजवाब प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। किशोर भाई कहते अरे अदा फीलिंग तो चेंज थींदी रहंदी आ त यो कीअं माना तनी पासवर्ड भी तो चेंज थींदो रहंदो आ न कॾहिं ॾिठो अथव कंहिंखे एक ही पासवर्ड हुए पर चाचा खाले चाहिए तो 2014 का वटी एकड़ो ही पासवर्ड है या चीज मुके थोड़ी मतलब अजीब लगी ये भी थिंदो आशा पासवर्ड तो वाईफाई जो वो चीज है जेका मानु एक आईडी चेंज कंदो रहंदो है।

ऐं चोथा अगरि मुंहिंजी फीलिंग पुछो त हुन जो वाईफाई पासवर्ड ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल इहो त तमामु सुठो थी वियो और चाचा खालिद कहते वाकई फायज़ा हकीकत आहे बिल्कुल बिल्कुल हकीकत आहे और मायरा असांजो प्रोग्राम ॿुधे पई वालेकुम अस्सलाम मायरा कहे थी कैसी है नाइस यो थैंक यू वेरी मच मायरा और कहती आज शाहिद बबर का गाना लगाइएगा सलाम देना सादिया और अनमोल और सब गर्ल्स को चलेंगे ठीक है सबको सलाम आपकी तरफ से

ओके जी, ॾाढो भलो गानो ॿुधो असीं। ॿियो हिकिड़ो ॾाढो भलो गानो असांजी लिस्ट में आहे, जेको मास्टर मंज़ूर जी आवाज़ में ही गानो आहे। अच्छा, ही सॉन्ग असां दिया जी तरफ़ खां अली खे डेडिकेट कंदासीं, अली मुर्तज़ा खे डेडिकेट कंदासीं। सो बिल्कुलु तमामु ख़ूबसूरत गानो, जेको अचो त गॾिजी इंजॉय कयूं था। बिल्कुलु प्रोग्राम तव्हांजो पंहिंजो आहे, पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो ऐं मूंखे ॿुधायो किथां किथां तव्हां मूंखे जॉइन कयो आहे। ऐं हा, टॉपिक ते तव्हांजो जवाबु छा हूंदो?

ओके क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा गाना। और इसी के साथ साथ हमारे साथ सादिया कहती है कि ये फीलिंग का ख्याल कहाँ से आ गया, सो रही थी अभी नींद से उठी हूँ, वाह साईं वाह ऐसे गाने कहाँ से लेकर आती हूँ, मेरे पर्स में पड़े होते हैं, जब दिल करता है बस निकाल कर आप लोगों को सुना देती हूँ। अच्छा कमर जमान बलोच के लिए वाईफाई पासवर्ड हैक भी हो सकता है, ऐसा ना हो कोई चेंज ना ले ले, ऐसा नहीं होगा ना, आपकी फीलिंग से रिलेटेड होगा तो बस आपकी फीलिंग तब्दील, आपका पासवर्ड तब्दील।

को तो मायरा कहते हैं कि सिद्रा आज लास्ट में कोई पोएट्री तो सुना दीजिएगा, आपकी पोएट्री शो में चार चांद लगा देती है, शो की रौनक और भी ज्यादा हो जाती है। चलिए मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी, आज आपको कोई अच्छी सी शायरी सुनाएंगे। और किशोर भाई कहते हैं कि मुझे घर जो वाईफाई ने माहिर स्मार्ट का हूँ, हाँ मता बो को समझो स्मार्ट का हूँ कंपनी जो भी बुधाए सुने।

अरे चाचा, तो बात ये थी कि वो मुझे ये लगा कि आपके पास तो ऑलरेडी अकाउंट है ना, तो आपको नई अकाउंट बनाने की क्या ही जरूरत पड़ेगी, इसीलिए बस मुझे ऐसा लगा था। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतना दुखी क्यों हो जाते हैं हर बात को लेकर, चिल रहा करें भाई, चिल रहा करें। और उनखां अलावा जेको आ सो ज़मान बलोच, बिल्कुल तव्हां टेंशन वठो, तव्हां जो गानो हलाईंदासीं, कल न हलायो त अॼु लाज़मी तव्हां पंहिंजो गानो ॿुधंदा, बसि थोरो सबर कयो, ठीकु आहे।

अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि अदा तुझा लिसनर चवन था मुझे डीपीए आया है नन्ना एआई वरी कीअं थी सघे थी हाणे तव्हां घुमण जो विया हुआ ओॾां फोटू त ज़ाहिरा कढराया हूंदा नी सो बसि इहा ॻाल्हि आहे बाक़ी माण्हू छा बि चवंदा हुननि ते ध्यानु न ॾींदा कयो जल्दी वापसी तव्हां मोटींदासीं जल्दी नमस्ते।

0: It's too.
1: तो आज इस्लामाबाद
2: जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद आई बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा
4: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
3: मजे दुकान जी बेड हलंदी
4: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
6: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: रोजानो सुबह 9:05 सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: शाला विछड़े ना यार।

हमेशा हालात हमारे एहसासात को नहीं बदलते, हमेशा हालात हमारे एहसासात को नहीं बदलते, बल्कि अक्सर हालात के बारे में हमारी सोच और नुक्ता नजर हमारे एहसासात को बदल देते हैं। जिंदगी में अपनी तवज्जो उन चीजों पर रखें जिन्हें आप वाकई बदल सकते हैं, और जो चीजें आपके अख्तियार में नहीं उनके बारे में बार बार सोचना जहनी सुकून को तबाह कर देता है। हर चीज को काबू में रखना जरूरी नहीं, कभी कभी उसे कबूल करना ही जहनी सुकून का रास्ता होता है। और अपनी सोच बदलें, अपना एहसास बदलें और जिंदगी को बेहतर अंदाज में जीना सीखें, और किसी की जाती जिंदगी में बिलावजह दखल ना दें। हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने फैसलों और अपने ख्यालात के हिसाब से जीने का हक होता है। किसी की निजी जिंदगी का एहतराम करना कोई एहसान नहीं बल्कि अच्छे अखलाक और इंसानियत की अलामत होती है। तो अपनी हुदूद को कायम रखें और इस चीज का ख्याल होना चाहिए कि भाई हमारी हदें कहाँ तक है और अगले इंसान की हदें कहाँ तक है, क्योंकि जब इन चीजों को समझना हम स्टार्ट कर देते हैं तब जाकर हमें इस चीज का एहसास होता है कि वाकई हमारे आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी क्या बाउंड्रीज हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनी जिंदगी में अपनानी चाहिए। तो कुछ चीजों के ऊपर हम ध्यान देते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम वाकई नजरअंदाज कर देते हैं। देखा जाए तो बहुत सारी हमारी जिंदगी की चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें नजरअंदाज हम ना चाहते हुए भी नहीं कर सकते, तो नहीं करना चाहिए। और अपनी जिंदगी पे फोकस दें, उन लोगों का ख्याल रखें जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल जी आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम की लास्ट लिंक में आप लोगों के साथ साथ जुड़ चुके हैं, और जितने भी लोग हमारे साथ हैं जनाब सबको वेलकम एंड खुशामदीद। आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया।

मेरे क्या बात है, बहुत ही प्यारा सामने गाना यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते जाइए। मुझे बताइए अभी हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम का हिस्सा है, और उसके अलावा बिल्कुल जी बहुत ही अच्छी अच्छी गाने हमारे लिस्ट में है। तो जरा हम टाइम को वेस्ट किए बगैर एक और गाना आप लोगों को सुना देते हैं। ये होने वाला है जी नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना, जिसकी फरमाइश हमें एक प्यारे भाई ने कर दी थी। तो इस गाने को भी साथ साथ एंजॉय करते हैं।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा हम यहाँ पर गाना सुनेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ हैं जी हरचंद राय कोहली कुंडली का तमाशा के ज्वाइन किया हुआ है हरचंद राय कोहली एंड चोवन कुमार कोहली। सलाम नमस्ते जी, वालेकुम अस्सलाम, सदा सलामत हो जो असा भी तमाम सा गड गड आयो तमाम बेहतरीन प्रोग्राम हले पयो। सो थैंक यू सो मच प्यारे भांजो मोहब्बत हूँ एंड प्रोग्राम बुध पया। और सादिया थैंक यू सो मच तमाम सा गड आयो। जाहिद अली बुर्दी भाई हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। और किशोर भाई कहते अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लेकर सात वचन लिए हैं तब जाकर पास बैठी है वो या भाभी आए अल्लाह।

0: गुलशन सुन रो
1: यू टू इन आवर गाने में अचानक अची शिरक कटाइंदो आए ओके गानो भलो आ

ओके, जुलरी का खालिक लाश आ रही है हमारे साथ यदि है जो शो जहाज वांगे उड़ामे पयो मजो अची वयो बुद्धि थैंक यू सो मच प्यारा भाजे तो मुखे लगे तो मुझे शो जगो थोड़ो लाइट हुयो अल्ताफ जाग जानी चाचू ससे गड मौजूद है कहते हैं प्ले शमन दर्द डई वया दिलवारा मानू रेडिकेट अजरा खोसो बिस्मिल एंड यू चाचू तां थोड़ी देर करी आया प्रोग्राम में सवेरे चो तां जो गानो हलायो हां सो थैंक यू तां ससे गड मौजूद है प्रोग्राम बुधो पया

अच्छा ठीक ठीक तकरीबन सारे गानों में होता है ना, इसीलिए मैं सुनकर थोड़ा हैरान हो जाती हूँ कि ये क्या था, बीच में आ जाता है. अच्छा हैप्पी कहती है ओके जाना बाय बाय, शाम के प्रोग्राम में बात करते हैं. ओके जी, शाम के प्रोग्राम में बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे. और अदो प्यारो अदो चेदो थैंक यू, तो मुझे हर दुआ में शामिल हूं दुआ है ये ततां जो मोहब्बत गुलाम करे चढ़ी दुआ है. कहते हिते गाना बुधण केर ही दुआ है चाचू.

ओके सो प्रोग्राम जो लास्ट वीक जो लगाया हुआ है लिस्ट में ही ओएसटी है ओएसटी बुधंदी उन अलावा इन ओएसटी से शायरी है जी शामिल प्रोग्राम कदासी बिल्कुल प्रोग्राम तुम्हो है तवजो साथ जो पूरे टे बजे तुम्हें डेली बेसिस से तवजो ही प्रोग्राम तुम्हें पहुंचाया वो है।

सुनो जाना, सुनो जाना, हो गया जो भी था मंजूर खसारा होना, हो गया जो भी था मंजूर खसारा होना, अब तो मुमकिन ही नहीं इश्क दोबारा होना। आप मासूम हैं, मोहताज रहें तो अच्छा है, आप मासूम हैं, मोहताज रहें तो अच्छा है। बड़ा जालिम यहाँ ये जमाना है, एक फकत तेरे सिवा दुनिया मयसर है मुझे, एक फकत तेरे सिवा ये दुनिया मयसर है मुझे। उसको कहते हैं मियाँ इश्क में हारा होना, और इसको कहते हैं मियाँ इश्क में हारा होना। एक तरफा की मोहब्बत में अजियत है बहुत, सुनो, एक तरफा की मोहब्बत में अजियत है बहुत, साथ उस दर्द के मुश्किल है गुजारा होना, साथ इस दर्द के मुश्किल है गुजारा होना। एन मुमकिन है उसे हमसे मोहब्बत ही नहीं, एन मुमकिन है उसे हमसे मोहब्बत ही नहीं, यानी मुमकिन ही नहीं उसका हमारा होना, यानी मुमकिन ही नहीं उसका हमारा होना। हो गया जो भी था मंजूर खसारा होना, अब तो मुमकिन ही नहीं इश्क दोबारा होना, अब तो मुमकिन ही नहीं इश्क दोबारा होना।

ओके जी हुबदार अली शेख आप हमारे साथ मौजूद हैं, लास्ट में आप आ चुके हैं प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद सखर से आप हमारे साथ हैं। जवार मोहम्मद बचल शबानी भाई हमारे साथ मौजूद है, खुश आमदीद कहा जाता है। चाचा कहते हैं हम और भी मोहब्बत हो जाएगी, हमारी भी एक तरफा मोहब्बत थी, यानी आसरू आए। मजाक। अच्छा मायरा, थैंक यू सो मच तहां से गड आयो। किशोर भाई आपका ओ इतना सारा थैंक यू, और सारे लोगों का बहुत ज्यादा वाला थैंक यू। यहाँ पर लेते हैं आप लोगों से इजाजत, वरी तहां से मुलाकात है भाई मुझे 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सो पांजो इलाही सारो खया रखना, इने का गलती थी हो जे तो माजरत कयूंगा। सो मोकलानी नाय बाबू सिन सलामत सा सलाम, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हैरान करे छोड़ो।

में गुजरियल तेज बरसात सबब केतरा इलाका पानी हेठ अची विया। रोड रस्ता पानी हेठ केतरन इलाकन में पानी घरन में दाखिल थी वयो। मुल्तान, बनू, सवात ए बियन इलाकन में भी बरसात। कराची में मौसम जुड़ाली, मुख्तलिफ इलाकन में बूंदाबांदी सबब मौसम खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकन में मुख्तलिफ रोड हादसन में 8 जणा हयाती विञाए वेठा। सोल्जर बाजार, मलीर, आयशा मंजल, बिन कासिम टाउन ए बियन इलाकन में रोड हादसा। ट्रैफिक पुलिस मूजिब कराची में हलंदड़ मुख्तलिफ रोड हादसन में 603 हयातियूं ज़ाया थियूं। 7,478 माण्हू ज़ख़्मी थिया। हेवी ट्रैफिक हादसनि में फोत थियल शहरनि जो अंगु 184 आहे। खातून अवल आसफा भुट्टो ज़रदारीअ पारां रावलपिंडीअ में हिना जावेद जे मुबैना क़तल ते ॾुख जो इज़हार। हिना जावेद जे मुबैना क़तल ते सोगवार ख़ानदान सां ताज़ियत ऐं हमदर्दीअ जो इज़हार। आसफा भुट्टो ज़रदारीअ चवण आहे त अफ़सोसनाक वाक़िए जी मुकमल ऐं शफ़ाफ़ जाच कराई वञे। ज़िमेवार माण्हुनि खे कानून जे मूजिबि अंजाम ताईं पहुचाए मिसाल क़ाइमु कई वञे।

0: कामू किरियो वासी शाह ज़मान एहसान सोलंगी के पोलियो हुजण जो शक ज़ाहिर कयो वियो। एक महीने के शाह ज़मान की एक जंग ए पेर फिरी वञण सबब वारसन पोलियो वायरस जो शक ज़ाहिर कयो। सतन वरियन के एहसान अली जो ब साल अग पेर फिरी वियो। वारसन जो चवण है तो बिन्हीं बारन जा जुज़ा वठी चकास लाइ लेपाटियूं माणिया वञनि। कोटड़ीजी में हथियार के जोर से फुर मजामत से नौजवान कतल वारसन पारा लाश रखी हुसैनाबाद स्टाफ वट धरणो। हथियार बंधन नाकाबंदी करे ईंदड़ वींदड़ गाड़ियों का फुर कई। मजामत खैरपुर वासी नौजवान फैसल भुट्टो मारजी वयो संदस दोस्त जख्मी। वारसन पारा वाके वारे हंध लाश रखी धरणो रोड ब्लॉक कातिल फौरी गिरफ्तार करण जो मुतालबो। प्रियालो भरसा कार इल्ज़ाम हेठ नौजवान नारी पीओ था कतल जवाबदार फरार। गोठ मां बख्श नारे जुमे जवाबदार आशिक नारे जे पांजे धी शकीला के कतल करे छड़ियो। इतला ते हद जी पुलिस वाके वारे हंद पहुंची लाश अस्पताल मुंतकिल करे छड़ियो। पीर जो गोठ वेजो बिन धुर।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

0: मौजूद आहिन। फौजी बाहरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
0: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पाकिस्तान जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर सुभाणे ईरान जो दौरो कंदो। ईरानी परडेही वजारत तर्जमान इस्माइल बकई चयो आहे त पाकिस्तानी आर्मी चीफ जे दौरे जो मकसद पाकिस्तान ऐं ईरान विच में लाॻापन खे वधीक मज़बूत करणु आहे। फील्ड मार्शल जो दौरो खिते में अमन इस्तहकाम बाबति पाकिस्तानी कोशिशुनि जो तसलसल आहे। परडेही मीडिया मूजिबि गुज़िरियल ॾींहुं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराची विच में फोन ते राब्तो थियो, जंहिं दौरान खिते जी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी नून लीग जे सदर नवाज शरीफ सां लाहौर में मुलाक़ात, मुल्क जे सियासी सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। मुलाक़ात में पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ बि शरीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सुभाणे खां 28 अगस्त ताईं बरतानिया जो सरकारी दौरो कंदो। परडेही तर्जमान मूजिबि इसहाक डार बरतानवी दौरे ते परडेही वज़ीर समेत ॿियनि आला अमलदारनि सां मुलाक़ातूं कंदो। मुलाक़ातुनि में सोमल में यरगमाल पाकिस्तान जो मामिलो थारियो वेंदो। ईरान ख़िलाफ़ अमरीका जी मुआशी जंग में मदद कंदड़ मुल्कनि जे मफ़ादनि खे निशानो बणायो वेंदो। ईरान जे क़ौमी सलामती काउंसिल जे सेक्रेटरी मोहसन रज़ाई चयो आहे त अमरीका पंहिंजी सफ़ारतकारी ऐं ॻाल्हियुनि सां धोखो कयो। पूरी दुनिया ॼाणे चुकी आहे त डोनाल्ड ट्रंप हिकु बेवकूफ़ शख़्स आहे। मका मुआदे बाबति सुवाल ते मोहसन रज़ाई चयो त मुआदे सां ज़ाहिर थिए थो त अमरीका इन्हनि मुल्कनि खे आगाह करे छॾियो आहे त हू खितो छॾणु चाहे थो। ईरान जे सदर मसूद पिज़िशान चयो आहे त दुश्मन ईरान खे वेनेज़ुएला बणाइण जो सोचियो, पर ईरानी अवाम जे इतिहाद सां ईरान अहिड़ी ताक़त बणिजी उभरियो जंहिं दुनिया खे हैरान करे छॾियो। रावलपिंडी ऐं इस्लामाबाद में गुज़िरियल तेज़ बरसाति सबबि केतिरा इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया। रोड रस्ता पाणी हेठि, केतिरनि इलाइक़नि में पाणी घरनि में दाख़िल थी वियो। मुल्तान, बनोन, सवात ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बरसाति। कराची में मौसम जुड़ाली, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बूंदाबादीअ सबबि मौसम ख़ुशगवार। कराचीअ जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 8 ॼणा हयाती विञाए वेठा। सोल्जर बाज़ार, मली रायशा मंज़िल, बिन कासिम टाउन ऐं ॿियनि इलाइक़नि में रोड हादसा। ट्रैफिक पुलिस मूजिबि कराचीअ में हलंदड़ साल मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 603 हयातियूं। जो अंग 184 आहे। खातून अवल आसफा भुट्टो ज़रदारीअ पारां रावलपिंडीअ में हिना जावेद जे मुबैना क़तल ते ॾुख जो इज़हार। हिना जावेद जे मुबैना क़तल ते सोगवार ख़ानदान सां ताज़ियत ऐं हमदर्दीअ जो इज़हार। आसफा भुट्टो ज़रदारीअ जो चवणु आहे त अफ़सोसनाक वाक़िए जी मुकमल ऐं शफ़ाफ़ जाच कराई वञे, ज़िमेवारनि माण्हुनि खे क़ानून मूजिबि अंजाम ताईं पहुचाए मिसाल क़ाइमु कई वञे। औरतुनि जे तहफ़ुज़ ऐं ॾोहनि जे रोकथाम लाइ असराइता क़दम खणणु इंतिहाई ज़रूरी आहिनि। खेरपुर में मुसाफ़िर गाॾियुनि खां भतो वठण जी शिकायत ते ज़िले जा 49 पुलिस अहलकार मुअतल। जांच जो हुकुम DIG सखर नासिर आफ़्ताब पठाण अहलकारनि खे सखर रिपोर्ट करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। मुअतल थियलनि में आसिफ़ शेख, नादर गुनियो, फ़हीम अब्बास, मोहम्मद मुराद, वसीम गोपांग ऐं ॿिया शामिल। ज़रियनि मूजिबि अहलकारनि खे मेराण हाईवे ते क़ाइम पॉइंट स्पीकर सां गाॾियुनि मां भतो वठण जे इल्ज़ाम सां मुअतल कयो वियो आहे। सकरंड में ॿिनि ॿारनि खे पोलियो हुजण जो शक ज़ाहिर। ॻोठ रहीम किरियो वासी शाह ज़मान ऐं एहसान सोलंगीअ खे पोलियो हुजण जो शक ज़ाहिर कयो वियो। हिकु महीने जे शाह ज़मान जी हिकु जंग ऐं पेर फिरी वञण सबबि वारसनि पोलियो वायरस जो शक ज़ाहिर कयो। 7 वरियनि जे एहसान अलीअ जो 2 साल अॻु पेर फिरी वियो। वारसनि जो चवणु आहे त ॿिन्ही ॿारनि जा जुज़ा वठी चकास लाइ लेबॉरेटरियूं माणिया वञनि। कोटड़ीजीअ में हथियारनि जे ज़ोर ते फुर दौरान मज़ामत ते नौजवान क़तल। वारसनि पारां लाश रखी धरणो। हुसैनाबाद स्टाप वटि हथियारबंदनि नाकाबंदी करे ईंदड़ वींदड़ गाॾियुनि खां फुर कई। मज़ामत ते खेरपुर वासी नौजवान फैसल भुट्टो मारिजी वियो, संदसि दोस्त ज़ख़्मी। वारसन पारां वाके वारे हंधि लाश रखी धरणो रोड ब्लॉक कातिल फौरी गिरफ़्तार करण जो मुतालबो प्रियालो भरिसां कार इल्ज़ाम हेठि नौजवान नारी पीउ हथां क़तल जवाबदार फरार ॻोठ इमाम बख़्श नारे जो में जवाबदार आशिक नारे जे पंहिंजे धीउ शकीला खे क़तल करे छॾियो इतलाउ ते हद जी पुलिस वाके वारे हंधि पहुची लाश इस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो पीर जो ॻोठ वेझो ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो फायरिंग नौजवान क़तल कोट पुल वारे इलाइक़े में जागीराणी बिरादरीअ जे ॿिनि धुरियुनि में हलंदड़ पुराणे तकरार तां झेड़ो थी पियो फायरिंग जे नतीजे में नौजवान आसिफ अली जागीराणी मारिजी वियो इतलाउ ते पुलिस वाके वारे हंधि पहुची नौजवान जो लाश इस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो धुरियुनि जे झेड़े में हिन वक़्त ताईं 8 ॼणा क़तल थी चुका आहिनि।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाए 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-3385-69

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर सुभाणे ईरान जो दौरो कंदो। ईरानी वॾे वज़ारत जो तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त पाकिस्तानी आर्मी चीफ जे दौरे जो मकसद पाकिस्तान ऐं ईरान विच में लाॻापन खे वधीक मज़बूत करणु आहे। फील्ड मार्शल जो दौरो ख़िते में अमन इस्तेहकाम बाबति पाकिस्तानी कोशिशुनि जो तसलसुल आहे। वॾे मीडिया मूजिब गुज़िर ॾींहुं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं ईरानी वॾे वज़ीर अब्बास राक्षी विच में फोन ते राब्तो थियो, जंहिं दौरान ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। नायब वज़ीर आज़म सागर सुभाणे खां 28 अगस्त ताईं बरतानिया जो सरकारी दौरो कंदो। पॾेही तर्जुमान मूजिब सागर बरतानवी पॾेही वज़ीर समेत ॿियनि आला अमलदारनि सां मुलाक़ातूं कंदो। मुलाक़ातनि में सोमालिया में यरगमाल पाकिस्तानियुनि जो मामिलो उथारियो वेंदो। ईरान ख़िलाफ़ अमरीका जी माशी जंग में मदद कंदड़ मुल्कनि जे वफ़ादनि खे निशानो बणायो वेंदो। ईरान जी क़ौमी सलामती काउंसिल जे सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमरीका पंहिंजे सिफारतकारी ऐं गाॾियुनि सां धोखो कयो। पूरी दुनिया ॼाणी चुकी आहे त डोनाल्ड ट्रंप हिकु बेवकूफ़ शख़्स आहे। मका मुआदे बाबति सवाल ते मोहसिन रज़ाई चयो त मुआदे सां ज़ाहिर थिए थो त अमरीका हिननि मुल्कनि खे आगाह करे छॾियो आहे त हू ख़ितो छॾणु चाहे थो। ईरान जे सदर मसूद पेशकियान चयो आहे त दुश्मन ईरान खे वेनेज़ुएला बणाइण जो सोचियो, पर ईरानी अवाम जे इतिहाद सां ईरान अहिड़ी ताक़त बणिजी उभरियो जंहिं दुनिया खे हैरान करे छॾियो।

0: रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुजर तेज बरसात सबब केतरा ही इलाका पानी हेठ अची विया बोट रस्ता पानी हेठ केतन इलाकन में पानी घर में दाखिल थी वो मुल्तान बनू सवात बेन इलाकन में भी बरसात कराची में मौसम जुड़ाली मुख्तलिफ इलाकन में बूंदाबांदी सबब मौसम खुशगवार कराची के मुख्तलिफ इलाकन में मुख्तलिफ रोड हादसन में अठ जना हयाती विञाए वेठा सोल्जर बाजार मलीर आयशा मंजिल बिन कासिम टाउन बेन इलाकन में रोड हादसा ट्रैफिक पुलिस मूजिब कराची में हलंदड़ साल मुख्तलिफ रोड हादसन में 603 हयातियूं ज़ाया थियूं 7467 माण्हू जख़्मी थिया हेवी ट्रैफिक हादसन में फोत थियल शहरियुनि जो अंगु 184 आहे.
1: Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps and it's killing team productivity. But for the first time
0: अफसोसनाक वाक्य जी मुकमल ऐं शफ़ाफ़ जांच कराई वञे ज़िमेवार माण्हुनि खे कानून मूजिब अंजाम ताईं पहुचाए मिसाल क़ाइम कयो वञे औरतुनि जे तहफ़ ऐं दोहनि जी रोकथाम लाइ असां हितां कदम खणणु इंतिहाई ज़रूरी आहिनि.

उन्हनि जा पुलिस अहलकार मुअतल जांच जो हुकुम। डीआईजी सखर नासिर आफ़ताब पठाण अहलकारनि खे सखर रिपोर्ट करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। मुअतल थियलनि में आसिफ शेख, नादिर भुनियो, फहीम अब्बास शहर, मोहम्मद मुराद, वसीम गोपांग ऐं ॿिया शामिल। सरीअ मूजिबि अहलकारनि खे महिरान हाईवे ते क़ाइम पॉइंटनि तां गाॾियुनि मां भतो वठण जे इल्ज़ामनि सबबि मुअतल कयो। सकरण में ॿिनि ॿारनि खे पोलियो हुजण जो शक ज़ाहिर। ॻोठ रहमोन केरियो वासी शाह ज़मान ऐं अहसान सोलंगी खे पोलियो हुजण जो शक ज़ाहिर कयो वियो। हिकु महीने जे शाह ज़मान जी हिकु टंग ऐं पेर फिरी वञण सबबि वारिसनि पोलियो वायरस जो शक ज़ाहिर कयो। सत वरियनि जे अहसान अली जो ॿ साल अॻु पेर फिरी वियो हो। वारिसनि जो चवणु आहे त ॿिन्ही ॿारनि जा जुज़ा वठी चकास लाइ लेबॉरेटरी माणिया वञनि। कोडी जी में हथियारनि जे ज़ोर ते पुर दौरान वसामत ते नौजवान क़तल। वारिसनि पारां लाश रखी धरणो। हुसैनाबाद स्टाफ वटि हथियारबंदनि नाकाबंदी करे ईंदड़ वेंदड़ गाॾियुनि खां पुर कई। वसामत ते ख़ैरपुरवासी नौजवान फैसल गुलज़ार भुट्टो मारिजी वियो। संदसि दोस्त ज़ख़्मी। वारिसनि पारां वाके वारे हंधु लाश रखी धरणो। रोड ब्लॉक कातिल फौरी गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। सियारो भर सां कार इल्ज़ाम हेठि नौजवान नारी पीउ हथां कतल। जवाबदार फरार। घोट इमाम बख़्श नारे जो में जवाबदार आशिक नारे जो पंहिंजी धीउ शकीला खे क़तल करे छॾियो। इतलाउ ते हथ जी पुलिस वाके वारे हंधि पहुची लाश अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। कानपुर मेहर भरिसां पाणी जे वारे तां ॿिनि घुरियुनि में जहिड़ो। फायरिंग में नौजवान क़तल। घोट अब्दुल करीम गडाणी में गडाणी बिरादरीअ जी ॿिनि घुरियुनि में जहिड़ो। फायरिंग जे नतीजे में 25 वरियनि जो हसन अली पुट अब्दुल वाहिद गडाणी मारिजी वियो। मकतूल जो लाश तालुके अस्पताल मुंतकिल। सखर में गुज़िरियल ॾींहुं क़तल थियल नारी जे वारिसनि जो कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ लाश रखे एहतजाज। नारी साजिता मिराणी जे वारिसनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतजाज कयो। वारिसनि जो चवणु आहे त साजिता मिराणी खे संदसि मुड़ुसु अली हसन मिराणी क़तल कयो आहे। घरू अणबणत तां जवाबदारनि असांजी नियाणी खे क़तल कयो आहे। पुलिस जवाबदारनि जी साथारी बणियल आहे। डीआईजी सखर ऐं SSP नोटिस वठी कातिल गिरफ़्तार कयो। मीरपुर मातेलो भरिसां बहिरम पुट मार खे घर अंदरि ज़ंजीरनि सां बधी छॾियो। वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल। घोट कूड़ो ख़ान लगारी में पीर सां औरत हसीना लगारी खे पथर दिल पुट असद लगारी ज़ंजीरनि सां बधी छॾियो। घर अंदरि क़ैद ज़ंजीरनि सां बधल औरत जी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल। औरत हसीना लगारी जो चवणु आहे त पुट 5 ॾींहनि खां ज़ंजीरनि सां बधी छॾियो आहे। सख़्तु तशदुद बि कंदो आहे। खेसि ज़ंजीरनि मां आज़ाद करायो वेंदो। नवाबशाह भरिसां मेहरान हाईवे ते तेज़ रफ़्तार ट्रक जो रिक्शा खे टकर। ॿ ॼणा फोत। पिंजेरी चौकी वटि हादसे में अनवर ऐं तनवीर ख़ासि थैली फोत। पुलिस जो चवणु आहे त फोत थी वियल पीउ पुट ॻोठ साले ख़ासि थैली जा रहवासी आहिनि। लाश अस्पताल मुंतकिल कया विया। हालियो जे इलाइक़े इब्राहिम हैदरी में बिजली जी बंदिश ख़िलाफ़ रहवासियुनि जो के इलेक्ट्रिक ऑफिस अॻियां धरणो। टायरनि खे बाहियूं ॾेई रोड ब्लॉक। इंतज़ामिया ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। मुज़ाहिरनि जो चवणु आहे त बिल भरण बावजूदि बिजली बंदि आहे, जंहिं करे पीअण जे पाणीअ जो संगीन बहरान पैदा थी वियो आहे। बिजली बहाल न थी त एहतजाज जारी रखियो वेंदो।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूह वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मुलाकात में सोहेल अफरीदी या क्यादत बाबत का भी गालना है कई नौरीन नियाजी मुलाकात में खुश हुई कुछ गालियों जाहिर नथु करे सकजन मुलाकात बाबत बेबुनियाद खबरों अची रही हैं। नौरीन नियाजी पीटीआई बानी के मुलाकात दौरान कैल गालियों बाहर न करने की भी खातरी कराई हुई।

सिंध हुकूमत पारां नौजवान वापारी मीर रज़ा कतल केस जी जांच लाइ जुडिशियल कमीशन क़ाइम करण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर जे तर्जुमान मूजिब मीर रज़ा अली ख़ान केस बाबति वारिसनि जा ख़दशा सिंध हुकूमत इंतिहाई संजीदगी सां वरिता आहिनि। वारिसनि पारां वॾे वज़ीर खे मोकिलियल ख़त पिण हुकूमत खे मिली वियो आहे। सिंध हुकूमत सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस खे जुडिशियल कमीशन जोड़ण जी दरख़्वास्त कंदी। जुडिशियल कमीशन जांच खामियुनि शाहिदनि ऐं सबूतनि जो जाइज़ो वठंदी। पुलिस मेडिको लीगल आफिसरनि ऐं ॿियनि लाॻापियल अख़्तियारनि जे किरदार जो पिणु जाइज़ो वरितो वेंदो। कमीशन टीह ॾींहनि अंदरि रिपोर्ट नतीजा ऐं सिफ़ारिशूं सिंध हुकूमत खे पेश कंदी। हुकूमत मीर रज़ा जे वारिसनि सां गॾु बीठल आहे।

मुसाफिर गाॾियुनि खां वतो वठण जी शिकायत ते ज़िले जा 49 पुलिस अहलकार मुअतल। जांच जो हुकुम DIG सखर नासिर आफ़ताब पठाण अहलकारनि खे सखर रिपोर्ट करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। मुअतल थियलनि में आसिफ शेख, नादिर गुनियो, फ़हीम अब्बास शहर, मोहम्मद मुराद, वसीम गोपांग ऐं ॿिया शामिल। ज़रियन मूजिब अहलकारनि खे मेरान हाईवे ते क़ाइम पॉइंटनि तां गाॾियुनि मां वतो वठण जे इल्ज़ामनि सबबि मुअतल कयो वियो। सकरण में ॿिनि ॿारनि खे पोलियो हुजण जो शक ज़ाहिर। ॻोठ रहमून कीरियो वासी शाह ज़मान ऐं एसआर सोलंकी खे पोलियो हुजण जो शक ज़ाहिर कयो वियो। हिकु महीने जी शाह ज़मान जी हिकु टंग ऐं पेर फिरी वञण सबब वारिसनि पोलियो वायरस जो शक ज़ाहिर कयो। 7 वरियनि जे एसआर अली जो 2 साल अॻु पेर फिरी वियो हो। वारिसनि जो चवणु आहे त ॿिन्ही ॿारनि जा जुज़ा वठी चकास लाइ लेबॉरेटरी वणिया वञनि। ओडीजी में हथियारनि जे ज़ोर ते पुरदौरान मुज़ाहमत ते नौजवान क़तल। वारिसनि पारां लाश रखी ॾियणो। हुसैनाबाद स्टाफ वटि हथियारबंदनि नाकाबंदी करे ईंदड़ वेंदड़ गाॾियुनि खां पुर कई। मुज़ाहमत ते खैरपुर वासी नौजवान फैसल गुलज़ार भुट्टो मारिजी वियो। संदसि दोस्त ज़ख़्मी। वारिसनि पारां वाके वारे हंधि लाश रखी ॾियणो। रोड ब्लॉक कातिल फौरी गिरफ़्तार करण जो मुतालबो। पिरियालो भरिसां कयल इल्ज़ाम हेठि नौजवान नारी पीउ हथां क़तल। जवाबदार फरार। ॻोठ मामबख़्श नारेजो में जवाबदार आशिक नारेजो पंहिंजी धीउ शकीला खे क़तल करे छॾियो। इतलाउ ते हथ जी पुलिस वाके वारे हंधि पहुची लाश इस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो।

कानपुर मेयर भरसा पानी के वारे बिन धुरियन में छेड़ो फायरिंग में नौजवान कतल घोट अब्दुल करीम गडानी में गडानी बिरादरी की बिन धुरियन में छेड़ो फायरिंग के नतीजे में पंच पीएफ वरीन जो अहसन अली पुट अब्दुल वाहिद गडानी मारजी वो मकतूल जो लाश तालुके अस्पताल मुंतकिल में गुजर ढी कतल थियल नारी के वारिसन जो कातिलन की गिरफ्तारी लाए लाश टकी एहतजाज नारी साजिदा मीरानी के वारिसन जवाबदारन की गिरफ्तारी लाए एहतजाज किया वारिसन जो चवण है साजिदा मीरानी के संदस मुड़स अली हसन मीरानी कतल किया है करू अड़ पड़त जवाबदारन असि न्याणी के कतल किया है पुलिस जवाबदारन की साथारी बणियल है डीआईजी सखर एसएसपी नोटिस वी कातिल गिरफ्तार किया।

0: रहम पुट माउ के घर अंदर जंजीरन सा बधी छो। वीडियो सोशल मीडिया से वायरल। पुट कूड़ो खान लगारी में पीर सर औरत हसीना लगारी के पत्थर दिल पुट असद लगारी जंजीरन से बधी छो। घर अंदर कैद जंजीरन से बधल औरत की वीडियो सोशल मीडिया से वायरल। औरत हसीना लगारी जो चवण है तो पुट पंज दिन का जंजीरन से बधी छो है। सख्त तशद भी कन्द है कि जंजीरन में आजाद कराया।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000।

0: मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, MADH, MS सिंध, RHMP इस्लामाबाद पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ए फैमिली फिजिशियन, माहिर अमराज गुर्दे पत्ते ए मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने थो। संदन जोड़न गोडन जो सूर, नक कन गलो पुराणो नज़लो निछू, मथे जो सूर अध मथे जो सूर, नज़र जी कमजोरी, कन जो वहण, कन जो सूर घट बुधण में अचण, शुगर ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फॉलिज, खंग, टीबी, मादे जो सूर, मादे जी अल्सर, तिली जो वधण, जिगर, हेपाटाइटिस बी सी, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सावरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियूं, बारन में कद जो न वधण, औरतन में कद जो न वधण, औरतन ए मदन जे मर्दन जे पोशीदा बीमारन जो कामयाब इलाज कयो वने थो। टाइम हर अरबा ए खमीस ते सुबह 10 खां 4 वगे खां तई, जर्मन हर खमीस खां सुबह 10 खां वठी शाम 5 वगे तई।
1: दोस्तों के टाइम टेबल बुधाईंदा हलूँ तो डॉक्टर साहब, हर अरबा खमीस जुमो छंछर आचर ए सूमर ते सुबह जो 10 खां शाम 5 वगे तई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधनपुरा पेट्रोल पंप कोतरी कबीर रोड मेहरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। प्रमाह सेहत जी गाल जी मेहरापुर FM 94 जो आवाज समाज समातुन ते पहुंचे पे। असन जे स्टूडियो में मौजूद सिंध जा मशहूर मारूफ डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण साहब जैसा असा गाल बोल करियूं था। सब का पहिरियां असा डॉक्टर साहब के खुशामदी चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब जो खास मेहरबानी आहिन, मोहब्बत आहिन जो पंहिंजो कीमती वक्त करी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम साईं।
1: डॉक्टर साहब ठीक आयो?
2: जैसे अल्लाह ताला जा एहसान।
1: अॼु कहिड़े मौज़ू बाबति असांजे मौज़ू ॿुधंदड़नि खे ॼाण ॾींदा, पर इन खां पहिरियां आऊं दोस्तनि खे नंबर ॿुधाईंदो हलां लाइव कॉल जो 0301-2196-8151 ते तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल बि करे सघो था। कंहिं बि बीमारी बाबति डॉक्टर साहब खां मालूमात वठी सघो था, पुछी सघो था, त पहिरियां डॉक्टर साहब सां मुखातिबु थींदा। जी डॉक्टर साहब,
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہریاں تو تعریفوں ان رب پاک جو جو اسا کے جارے تو خارائے تو روزی دے تو خوشی دے تو سبنی زمینی آسمانی آفتن کا محفوظ رکھے تو۔ اساں پروگرام صحت جی گال اور خبر ہے تو ہر روز ان ٹائم تے نشر تھیندو ہے۔ اڑے طریقے سان اساں جی کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک جے کہ مہراپور شہر میں موجود ہے، ایڈریس اواں کے نوٹ کرے نالو जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड। टाइमिंग असांजी सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। डेज़ असांजा जेके ॾींहं आहिनि विहण जा उहे आहिनि हफ़्ते जा 6 ॾींहं, जंहिंमें 3 ॾींहं असांजी चेकअप फीस फ्री हूंदी आहे, जुमे जो ॾींहुं, छंछर जो ॾींहुं ऐं आचर जो ॾींहुं। उनखां अलावा अंगारे जो ॾींहुं असांजी मोकल हूंदी आहे। बक़ाया ॿिया ॾींहं असां क्लिनिक ते मौजूदु आहियूं। सूमर अरबा खमीस बि क्लिनिक जा डेज़ आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां असांजो प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि हुन में कोशिशि कंदा आहियूं त जेके बि असांजी जे तव्हां शुरू में असांजो प्रोमो ॿुधंदा आहियो त हुन में जेके बि बीमारियूं आहिनि उन जे मुतालिक़ तव्हांखे आगाही ॾिनी हूंदी आहे। जंहिंमें बीमारियुनि में असां मादे जी बीमारी बि अव्हां ताईं डिस्कस कंदा आहियूं। न सिर्फ़ु डिस्कस कंदा आहियूं, जॾहिं उनजा पेशंट असां वटि क्लिनिक ते ईंदा आहिनि त पोइ उन्हनि जी ट्रीटमेंट बि कई वेंदी आहे। अलहमदिल्ला हू काफ़ी सारो हुन में फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे अहिड़े तरीक़े सां। ऐं जॾहिं असां वटि के अहिड़ा केसिस वधी वेंदा आहिनि, हर असां वटि तव्हां ॾिसंदव त ॿिए मां टियों शख़्स मादे जी बीमारियुनि में ई मुंतकिल हूंदो आहे ऐं असां वटि ईंदो आहे। ऐं जेको आहे सो उनजी जेकॾहिं असां वटि डाइग्नोज़ करे ईंदो आहे त असां हुनखे मुख़्तलिफ़ टेस्टूं करे ईंदा आहियूं, जंहिंमें हिकु टेस्ट जॾहिं पेशंट असांखे कुझु निशानियूं ॿुधाईंदो आहे तकलीफ़ जे हिसाब सां, त हिकु टेस्ट एच पैलोरी ज़रूरु कराईंदा आहियूं। एच पैलोरी इन जे करे कराईंदा आहियूं जॾहिं उहो पेशेंट ईंदो आहे, मादे जी त हर को दाह कंदो आहे, कंहिंखे जलन रहंदी आहे, कंहिंखे यानी एसिडिटी थींदी आहे, कंहिंखे छार वग़ैरह ईंदी आहे। पर कंहिं कंहिं पेशेंट अहिड़ा हूंदा आहिनि त चवंदा आहिनि असांखे मानी खाइण सां ई जेको आहे सो पेट में सूरु पियो वञे, या जलन बि थिए थी, गॾो गॾु उल्टी बि अचे थी, कड़वाहट बि थिए थी, ऐं उन खां गॾो गॾु उहो अॻिते हली जेको
1: आहे मौज़ू खे जारी रखंदासीं। मुंहिंजो ख़्याल आहे कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, पहिरियां उन दोस्त खे शामिलु कंदा हलूं। इन खां बाद में वरी कॉलनि जो सिलसिलो बि जारी रहंदो, पंहिंजो मौज़ू बि कॉलनि सां गॾु जारी रखंदासीं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
1: साईं, मुंहिंजो केर साहिब पियो ॻाल्हाए? भलीकार चऊं था। ज़हीर साहिब ठीकु आहियो? छा पुछंदा डॉक्टर साहिब खां मुंहिंजा साईं?
3: मौके जी बीमारी आहे, मौको आहे।
1: अच्छा, फाइल्स आहिनि?
3: इन जो को इलाज?
1: बिल्कुल इलाज मौजूद है डॉक्टर साहब वट भले हलिया अचो यो इलाज मुकमल मौजूद है तक ऑपरेशन कराने की जरूरत ना है छो जो जी मूँ ऑपरेशन कराइन था उन्होंने वरी थी वन था अलहमदिल्ला मशहूर डॉक्टर एक वो डॉक्टर तुम मौजूद है मेहरापुर शहर में तुम भले सुबह ही हलिया अचो रूबरू दिखारियस इलाज मौजूद है इनशाला तक रिजल्ट मिलो एफ एम बुध डॉक्टर साहब वहाँ बुधाए तो बिल्कुल एग्जैक्ट यही है ऑपरेशन कराने वरी थी था वन पा ते दवा डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब को
3: बी
1: जगह तेज़ लागो इलाज कराया डॉक्टर मंजूर साहब का माशाल्लाह मशहूर डॉक्टर तो पूरी सिंध में परे परे जहाँ पंजाब का बलोचिस्तान का मूल डॉक्टर साहब इंदा पा प्रोग्राम में बुधा हों मू पा मैसेज दई रिजल्ट मिलो
2: खुशी भी यह थी असाजे आवाम में माशाल्लाह तमाम सुठो शऊर अची वो है यानी दिसो अस हर प्रोग्राम में अस खुद जैसे पेशेंट्स के आवाम के बुधाई त जॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जा केसिस थींदा आहिनि मिसलनि पाइल्स आहे या मौक़ा आहिनि मिसल बवासीर आहे त जॾहिं को बि ऑपरेशन डॉक्टर ॿुधाए थो भई माण्हू कराए था अचनि त वरी दुबारा थी वेंदा आहिनि लेकिन पोइ शायदि असांजी इन ॻाल्हि खे केरु सीरियस न वठंदो आहे या एतमाद न कंदो आहे पर इहा हक़ीक़त आहे जेकी अॼु ख़ुदा ते तव्हांखे जेको आहे सो पाण ॿुधाई ज़ाहिर आहे उन जे तजुर्बे जी अॼो को अज़ीज़ हुनजो को मिट माइट को अहिड़ो ऑपरेशन करायो हूंदो जंहिंखे वरी दुबारा थियो हूंदो तॾहिं हो छो जो हर ॻाल्हि केरु पंहिंजे तजुर्बे सां ई कंदो आहे असांजा बि जेके इहे दावा हूंदा आहिनि ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि या इलाज जेको कंदा आहियूं त पंहिंजे तजुर्बे सां ई ऐं पंहिंजी स्टडी सां ई कंदा आहियूं त इन जे करे अव्हांखे इहा ॻाल्हि वाक़ई जेको आहे सो हक़ीक़त आहे त जेको बि जेको आहे सो जेकॾहिं बवासीर जो ऑपरेशन कराए थो त हुनखे दुबारा थी वञनि था छो जो इहो जड़ हुनजी ख़तमु नथी थिए ऐं असां पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधाईंदा आहियूं त होम्योपैथिक उहा दवा आहे जेकी मर्ज़ खे जड़ खां वठी ख़ात्मो आणींदी आहे चाहे पोइ उहो बवासीर छो न हुजे चाहे स्टोन्स पथरियूं छो न हुजनि चाहे जेको आहे सो नक जी हॾी वधियल हुजे उनजो ऑपरेशन छो न हुजे चाहे कहिड़ो बि मर्ज़ु हुजे जॾहिं असां उनजो इलाजु कंदा आहियूं त उहो मर्ज़ु हा कुझु टाइम ज़ाहिर आहे त उनखे दवा इस्तेमालु करणी पवंदी आहे चारि महीना पंज महीना छह महीना कंहिंजो कंहिंजो जेको आहे सो मिसाल को ॾिसो कंहिंखे पुराणो दमो आहे पुराणी जोड़नि जी तकलीफ़ आहे पुराणी अमराज़ आहिनि हूअं जो मेडिकल जी दवा सारी ज़िंदगी खाए पर जेकॾहिं कुझु अरसो होम्योपैथिक दवा खाइबी त उन ऐं बग़ैर कंहिं साइड इफ़ेक्ट जे हुन जा साइड इफ़ेक्ट आहिनि हिन जो को साइड इफ़ेक्ट कोन्हे त उन सां पेशंट रिकवर न सिर्फ़ु रिकवर थींदो वेंदो आहे बल्कि गॾो गॾु तंदुरुस्त बि थींदो वेंदो आहे जी हा सो असां अचूं था पंहिंजे मौज़ू जे तरफ़ त मां ॻाल्हि पई कई त एच पायलोरी हिकिड़ो बैक्टीरिया हिकिड़ो जरासीम आहे जेको असांजे मादे में नंढी आंडे जे हिसे पहिरें हिसे में वञी वेही रहंदो आहे ऐं पोइ जेको आहे सो उन जे हुजण सां यानी उन उहो हिकिड़े क़िस्म जो दुश्मन हिकिड़ो जरासीम आहे जेको असांजे मादे में वेंदो आहे असांजे मादे खे डिस्टर्ब कंदो आहे ऐं पोइ जेको आहे सो उन जे करे जेकी मां तव्हांखे तकलीफ़ ॿुधाई त पेट मानी खाइण सां जेको आहे पेट में सूरु पइजी ईंदो आहे कंहिंखे उल्टी थी वेंदी आहे कड़वाहट थी वेंदी आहे एसिडिटी थी वेंदी आहे जलन थी वेंदी आहे पोइ गॾो गॾु इहा जॾहिं तकलीफ़ वधंदी वेंदी आहे त वरी मत जेको आहे सो वॾे आंडे में बि जेको आहे सो इहा जेको सो जरासीम अची वेंदो आहे जंहिंजे करे पोइ यानी हिकिड़े ॿ टिनि क़िस्मनि जूं शिकायतूं थींदियूं आहिनि फिर मां पहिरीं ॻाल्हि ॿुधाई कंहिंखे मानी खाइण सां जल्दी सूरु पइजे कंहिंखे वरी ईअं थींदो आहे जो केरु मानी खाईंदो आहे कुझु टाइम खां ॿिनि टिनि कलाकनि खां पोइ हुनखे शदीद सूरु पवंदो आहे इहा बि जेको आहे सो हिकिड़ी ख़ासि अलामतूं आहिनि ऐं इहे जेको आहे सो तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त एच पायलोरी यानी हेलिको बैक्टीरिया वायरस आहे जंहिंखे घणा मज़ाक कंदा हेलीकॉप्टर वारी बीमारी बि चवंदा आहिनि लेकिन इहो हिकिड़ो जरासीम आहे हेलिको बैक्टीरिया जेको कंहिंखे बि थी सघे थो ऐं इन जे थियण सां जेको आहे सो पेशंट यानी सवली सिंधी में चऊं त मैदे जी अल्सर थी वेंदी आहे जंहिंजे करे पेशंट तकलीफ़ में अची वेंदो आहे अॻिते हली जॾहिं इहा तकलीफ़ वधंदी वेंदी आहे त पोइ इन मां मैदे जो यानी अल्सर मां कैंसर बि थी सघे थी इन जे करे घणा इनखे सीरियस न वठंदा आहिनि ऐं असां वटि मशहूरु बसि हिकिड़ो कैप्सूल आहे जेको रोज़ु माण्हू राति जो खाईंदो
4: हवा सां उहो कैप्सूल खाईंदासीं। अवां खे ख़बर आहे त इन अहिड़े क़िस्म जी दवाउनि जा साइड इफेक्ट्स केॾा ख़राब आहिनि। उहे कैप्सूल अॻिते हली पंहिंजी तव्हांजे जिस्म जूं जेकी हॾियूं हूंदियूं आहिनि उहे कमज़ोर करे छॾींदो आहे ऐं उहे भुरभुरियूं थी वेंदियूं आहिनि ऐं उन खां पोइ दुनिया जी का बि पेन किलर उनखे यानी फ़र्क़ु न ॾींदी आहे। उन सां अॻिते हली हुन जे अवां जी मर्दानगी ते असर पइजी वेंदो आहे, तव्हांजी जेको आहे सो ताक़त ख़तमु थी वेंदी आहे। लेकिन इहे साइड इफेक्ट्स आहिनि, कंहिंजी नज़र घटिजी वेंदी आहे, कंहिंजो को मसइलो थी वेंदो आहे। लेकिन हिते सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असां वटि इहो आहे त जल्दी असांखे फ़ाइदो पए, पोइ चाहे इंजेक्शन मां पए, चाहे ड्रिप मां पए, चाहे हज़ारे रुपया ख़र्चु करण सां पए, पर जल्दी पए ऐं आरज़ी छो न उहो आरज़ी फ़ाइदो हुजे। पर हिते जेकॾहिं असां मुकमल कंहिंखे कुझु टाइम ॾींदा आहियूं त हिते कुझु टाइम दवा माण्हू खाइण जे लाइ तयारु न हूंदा आहिनि। पर जेके पेशंट्स असां वटि अची चुका आहिनि ऐं कुझु टाइम जेको हुननि असांजे चवण ते दवाऊं खाधियूं आहिनि त उहे अहिड़े जेके मूज़ी अमराज़ आहिनि उन्हनि मां अलहमदिल्ला उन्हनि खे छुटकारो मिली चुको आहे। जंहिंजा व्यूज़ उहे ख़ुदि FM रेडियो ते लाइव बि ॿुधाईंदा आहिनि ऐं असां वटि क्लिनिक ते अची बि जेको आहे सो लाइव रिकॉर्ड कराए वेंदा आहिनि, जंहिंमां कुझु व्यूज़ आहिनि जेके अॼु बि अवां ताईं ॿुधाईंदासीं। लेकिन पहिरियां हिन बीमारी जे बारे में अवां ताईं इहा आगाही पहुतासीं त अहिड़े क़िस्म जी ख़तरनाक बीमारी आहे, उनजे करे जेको आहे सो तव्हांखे निंड बि न अची सघे थी, तव्हांजी जेको आहे सो बेचैनी थी सघे थी, तव्हां डिप्रेशन जा पेशंट थी सघो था, तव्हां रत जी कमी में अची सघो था, तव्हां कमज़ोरी में अची सघो था, तव्हां खोड़ सारी बीमारियुनि खे मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे। इन जे करे इन जो होम्योपैथिक में तमामु कामयाबु इलाजु आहे ऐं इन खां रोकथाम जे लाइ अव्हांखे जल्द अज़ जल्द जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी अव्हांखे शिकायत थिए थी जेकी तव्हांखे ॿुधाई आहे त तमामु क़रीबी कंहिं सुठे गिस्ट्रोलॉजिस्ट वटि या होम्योपैथिक के सुठे फिज़िशियन खे ज़रूरु ॾेखारियो। इन जूं मुख़्तलिफ़ टेस्टूं थींदियूं आहिनि, एच पैलोरी हिकिड़ी ब्लड टेस्ट थींदी आहे, लेकिन आउं सजेस्ट कंदो आहियां एच पैलोरी स्टूल जी टेस्ट जेकी हूंदी आहे, पाखाने जी जेकी टेस्ट हूंदी आहे, उनमें एंटीजन मौजूदु हूंदो आहे ऐं उहो जरासीम नज़र अची वेंदो आहे। ऐं उन खां पोइ खोड़ सारियूं ॿियूं बि टेस्टूं आहिनि उन्हनि जी जेको आहे सो यानी जीअं हिकिड़े क़िस्म जी अव्हांखे सवली सिंधी में ॿुधायूं त कैमीरा यानी उनजी टेस्ट जहिड़ी थींदी आहे त कैमीरा आंडर में वेंदी आहे ऐं उनजी पोइ मुकमल उनमें ख़बर पवंदी आहे त उनमें बि जेको आहे सो इहो जरासीम मौजूदु आहे या न आहे अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो इन जे करे। लेकिन एतिरनि वॾनि टेस्टनि खां बचण जे लाइ बहितर इहो आहे त की तव्हां सुठे डॉक्टर खे ॾेखारींदव त उनमें अव्हांजो वक़्तु बि बचंदो, अव्हांजो पैसो बि बचंदो ऐं अव्हांखे जेको आहे सो जल्दी शिफ़ा बि थी वेंदी। अहिड़े तरीक़े सां अव्हांखे यानी मां जेकी बीमा टेस्ट जी ॻाल्हि बि कई त यानी घणा तव्हां एंडोस्कोपी ज़रूरु ॿुधो हूंदो, हिनखे एंडोस्कोपी चइबो आहे जेको आहे सो टेस्ट कई वेंदी आहे। लेकिन इन्हनि टेस्टुनि खां इन टाइमिंग ख़राबु थियण खां बचण जे लाइ बहितर इहो आहे तव्हां असां वटि जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक ते कॾहिं बि अचो। अहिड़े क़िस्म जी का बि तकलीफ़ आहे त अलहमदिल्ला हुन में बिल्कुलु शिफ़ाया बि थींदी। इन में पंहिंजे सिहत जो ख़्यालु रखंदा कयो, कोशिशि कंदा कयो त छो जो बीमारी किथां ॿाहिरां कोन ईंदी आहे, पंहिंजे पेट जे रस्ते वात जे रस्ते वेंदी आहे। जॾहिं तव्हां अहिड़ी का शयूं इस्तेमालु कंदो त तव्हांखे इहा तकलीफ़ वधी सघे थी। इन जे करे ॻाढ़ो मिर्च असांजो दुश्मन आहे, ॻाढ़ो मिर्च तमामु घटि में घटि इस्तेमालु कयो ऐं अहिड़े तरीक़े सां मानी तव्हां पंहिंजे टाइम ते ज़रूरु खाईंदा कयो, यानी जेको टाइम आहे राति जो तक़रीबन मां इहो सजेस्ट कंदुसि त 8 बजे अव्हांखे 7 बजे 8 बजे तव्हांजे राति जी मानी खाइणु खपे त जीअं सुम्हण जे टाइम खे थोरो वक़फ़ो मिली सघे ऐं तव्हां थोरो मानी हज़म थी सघे। अहिड़े तरीक़े सां खाधे पीते खां पाणी जेको आहे सो ज़रूरु अॻे थोरो पीअ खाई पी मानी ऐं जल्दी पाणी पीअण बि जेको आहे सो मादे खे नुक़सानु पहुचाईंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे सो तरियल शइ नुक़सानदेह आहे, खटी शइ नुक़सानदेह आहे। सुठो फ्रूट अवां जेको आहे सो इस्तेमालु कयो, अव्हांखे काफ़ी फ़ाइदो। हर खाधे खां पोइ सौंफ़ चूसण जी आदत विझो, सौंफ़ तमामु हिकिड़ो मादे खे जेको आहे सो साफ़ु रखे थो ऐं ख़ुशबूदार रखे थो ऐं तकलीफ़ुनि खां जेको आहे सो बचे थो। पाणी जो इस्तेमालु तमामु ज़्यादा कयो, चांहि जो इस्तेमालु बंदि कयो, खीर जो इस्तेमालु अवां पंहिंजे मामूल में आणियो, इनशाला तव्हां अवां बिल्कुलु जेको आहे सो ठीकु थी वेंदो ऐं सिहतयाब थी वेंदो। ऐं अहिड़े तरीक़े सां अव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदा हलूं त जेको आहे सो जेके बि इहे असां वटि जेके ॿाहिरियूं शयूं जेके तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो, बर्गर वग़ैरह या मुर्गनि गिज़ाऊं, इहे तमामु हानिकार आहिनि ऐं नुक़सानकार आहिनि, इन्हनि खां तव्हां काफ़ी बची सघो था। ऐं जेको अॼुकल्ह जो दौरु आहे, डिप्रेशन जो दौरु आहे ऐं अव्हां जेको आहे सो घणा घरनि में वेही करे घणी मोबाइल इस्तेमालु कंदा, इन खां बहितर इहो ई आहे त तव्हां ॿाहिरि जेको आहे सो स्पोर्ट्स में जेको आहे सो हिसो वठो, कुझु रांदियुनि में, कुझु वॉक में, त इन सां बि जेको आहे सो तबियत ते तमामु घणो जेको आहे सो फ़ाइदो पए थो। तव्हां डिप्रेशन खां बची सघो था, बेकार ॻाल्हियुनि खां बची सघो था, बेकार ख़्यालातनि खां बची सघो था, सुठा ख़्यालात हूंदा ऐं तव्हांजी ज़िंदगी सुठी गुज़री सघे थी, तव्हां होर सारी बीमारियुनि खां जेको आहे सो बची सघो था। जी सर,
1: तमामु बहितरीन। दोस्त तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेरापुर FM 94 जे स्टूडियो मां लाइव अव्हांजी ख़िदमत में पेश कयो पियो वञे। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु, जेके सिहत बाबति मालूमात ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमो छंछरु आचार ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधणपुटा पेट्रोल पंप कोतली कबीर रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि। वज़रीअ लाइव कॉल तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था 0301-91-851 एहसन साहब खे चवंदासीं त उहे बि कुझु बीमारियुनि बाबति ॿुधाइनि असांजे मौजूदु ॿुधंदड़नि खे, जेके दोस्त ॿुधी रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिबु हफ़्ते जा 6 क्लिनिक ते मौजूदु हूंदा आहिनि, मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि। कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज नाहे। पिते जी पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, उनखे बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। नक जी हॾी वधियल आहे, गले जा गुदूद वधियल आहिनि, पाइल्स आहिनि, उन्हनि जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाज कयो वञे थो। 0301-91-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी अव्हांखे सिहत बाबति मालूमात ॾेई रहिया आहिनि।
0: जीअं त असां माहिर अमराज़ कुझु बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, जीअं गुर्दे, पिते ऐं मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कयो वञे थो। संदनि जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुन रग जो सूरु, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछू, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु ऐं नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फाल जे खंघु, टीबी, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं ऐं ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि में न वज़न जो न वधणु, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो।
1: तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कॉल शामिल थी सघो था 0301-91-851। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजे समातुनि ताईं पहुचे पियो। कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो, का बि बीमारी लाइलाज नाहे। अक्सर करे मरीज़ लाइलाज थी करे वॾनि वॾनि इस्पतालुनि मां, वॾनि वॾनि शहरनि मां वापसि थी करे वरी बि प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु वटि ईंदा आहिनि ऐं अलाह ताला जे हुकुम सां हर इलाज मौजूदु आहे। शिफ़ा ॾियण वारी ज़ात अलाह ताला जी आहे, डॉक्टर साहबु इलाजु कंदो आहे ऐं यकीननि अलाह ताला जे हुकुम सां ई रिज़ल्ट मिलंदो आहे, माण्हुनि खे शिफ़ा मिलंदी आहे। जॾहिं शिफ़ा मिले थी तॾहिं इंसान जी पंहिंजी दिलि हिकिड़ी मुतमैन हूंदी आहे। त प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 जो ही आवाज़। हीउ वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, गॾु गॾु रहिजो, ॿुधंदा रहो जीअं मेहरापुर FM 94।

0: ਨੰਬਰ ਹੈ 0301-8196-851। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛ ਸਕੋ ਥਾ। कराची इस्लामाबाद ए नवाबशाह जो मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह MA/DS MS सिंध RHMP पाकिस्तान होम्योपैथिक कंसल्टेंट ए फैमिली फिजिशियन माहिर अमराज गुर्दे पित्ते ए मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने थो। संदन जोड़न गोडन जो सूर कन कुनरक जो सूर नक कन गलो पुराणो नज़लो निछू मथे जो सूर अध मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिलि जा मर्ज़ फालिज खंग चीबी मादे जो सूर मादे जी अल्सर तिली जो वधण जिगर हेपेटाइटिस BC गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवणो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरणियूं ऐं ॿारनि में कद जो न वधण ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पुशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो।
1: तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिए लाइव कॉल शामिल थी सघो था। 0301-8196-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-8196-851। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहब असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति मालूमात ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहब, हर अरबा खमीस जुमो छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। हिकु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जी तरफ़ थींदासीं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बुर्दी साहब खे ख़ुशि आमदी चवंदा। बुर्दी साहब, छा पुछंदा भाडा साहब खां?
2: लूण जेकी आहे उहा पियूं था त पोइ असांजी ब्लड प्रेशर सही थो रहे, जंहिं महिल नथा पियूं त असांजी ब्लड प्रेशर कम थो रहे।
1: अच्छा, लूण पियो था त पोइ सही थो रहे, नथा पियो पोइ वरी तव्हांजो ब्लड प्रेशर घटि थो थी वञे। टेबलेट वग़ैरह खाईंदा आहियो छा ब्लड प्रेशर जी? घणे टाइम खां वठी
2: आहे? सर, टेबलेट वग़ैरह इलाही इस्तेमालु कया आहिनि सर, कोई फ़र्क़ु नथो पए।
1: कोई फ़र्क़ु नथो पए पियो, माना BP तव्हांजो लो रहे थो।
2: जी जी।
1: कहिड़ियूं शयूं ज़्यादा इस्तेमालु कयो था खाइण पीअण में?
2: सर, इहा दाल जी मुङ।
1: जी
2: सर, सब्ज़ी असां दाल जी मुङ खाऊंदा।
1: अच्छा, दाल जी मुङ या मुङनि जी दाल खाईंदा आहियो?
2: मुङनि जी दाल।
1: अच्छा, मुङनि जी दाल खाईंदा आहियो न? मुङनि जी दाल, सब्ज़ी, वॾो गोश्त वग़ैरह बि खाओ था?
2: जी सर।
1: वॾो गोश्त बि खाईंदो
2: आहे? न सर।
1: इहो खाईंदो कर न, वॾो गोश्त जंहिंजो ब्लड प्रेशर हाई थियो हाई हुजे न उहो न खाए, जंहिंजो लो हुजे उनखे खाइणु खपे। हा दा
2: सर, वॾो गोश्त जेको आहे असांजो वरी हेपाटाइटिस जो मसलो आहे।
1: अच्छा, हेपाटाइटिस जो मसलो आहे, माना मुख़्तलिफ़ बीमारियूं आहिनि। ॿुधो, FM ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो।
2: जी जी सर।
1: ओके ओके। जी डॉक्टर।
3: जी सर, बिल्कुलु। लो ब्लड प्रेशर जूं वजूहात तमामु घणियूं आहिनि, छाजे करे लो ब्लड प्रेशर थींदो आहे ऐं लो ब्लड प्रेशर थी वञे थो त पोइ हुन में छा तकलीफ़ थींदी आहे। एक्चुअल जे मां पहिरीं ॻाल्हि कई त हुनजा वजूहात तमामु घणियुनि जी आहे, पाण ॿुधायो त मूंखे हेपाटाइटिस आहे, यानी मुख़्तलिफ़ उनखे बीमारियूं हेपाटाइटिस जे करे ज़ाहिर त ॿियूं बि तकलीफ़ूं थी वेंदियूं आहिनि, रत जी कमी, जिगर जी तकलीफ़, मैदे जी तकलीफ़, त इन्हनि जे करे जेको आहे सो जिस्म में पाणीअ जी कमी, डिहाइड्रेशन जी कमी थी वेंदी आहे, रत जी कमी थी वेंदी आहे, ऐं माण्हू ख़ासि करे परेशान रहणु शुरू कंदो आहे, डिप्रेशन में अची वेंदो आहे, जंहिंजे करे पोइ हुनखे रत जी कमी जेको आहे उन सां गॾोगॾु छा थींदो आहे जो खाद ख़ुराक बि माण्हू घटाए छॾींदो आहे, त ज़ाहिर त ग़िज़ा जी कमी ऐं इन्हनि शयुनि जी कमियुनि जे करे जेको आहे लो ब्लड प्रेशर रहणु शुरू थींदो आहे। नमक विझी इस्तेमालु करणु इहो बींग अ टेम्पररी टाइम त बहितरु आहे, लेकिन इहा का ट्रीटमेंट कान्हे का, इहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु उन वक़्त जो पूराउ करणो हूंदो आहे जेको ब्लड प्रेशर घटि हूंदो आहे उनखे जेको अप करण जे लाइ, यानी असांजो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 खां नॉर्मल माण्हू जो 120 खां 180 ताईं हुजणु खपे, ऐं उनखां जेकॾहिं घटिजी वेंदो, ऐं इहो बि यादि रखे पेशंट त जेकॾहिं گھنا چوندا ہیں تا ہائی بلڈ پریشر خراب ہے، لیکن ماں جن سر لو بلڈ پریشر تمام انتہائی خراب ہے، چھو جو جے کدے لو بلڈ پریشر گھنو تھی ویندو ہے تا وہ پیشنٹ پو اگتے ہلی ان میں ہائپو میں اچی ویندو ہے، یعنی بے ہوش بھی تھی سکے تو، پو اگتے ہلی ان جی یعنی ان جی موت بھی واقع تھی سکے تھی۔ ان جے کرے بہتر یہ ہے تو ان جو جلد از جلد ان جی ٹریٹ

0: ट्रीटमेंट करणु घुरिजे। ग़िज़ा जो पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखे। ग़िज़ा में ॾिसो मिसलनि हिकु त अॻे ॿुधायो त हेपाटाइटिस जो पेशंट आहे, अहिड़े क़िस्म जे पेशंट खे ॾिसी पोइ जेको आहे सो को बि ग़िज़ा का बि दवा पोइ माण्हू ॿुधाए सघे थो, छो जो ईअं ॿुधाइणु इंतिहा ग़लति आहे। फ़िलहालु उनखे ज़रूरु इहो चई सघंदासीं त कोशिशि करे त जेको आहे सो पाण खे धूप खां उस खां जेको आहे सो गर्मी खां पासे, छो जो जीअं हुनजो पसीनो निकिरंदो त हुनखे ब्लड प्रेशर हुनजो अञा लो थींदो, ऐं उनखां पोइ खाद खुराक पाण खे बुख न ॾियारे ऐं पाणी जो इस्तेमालु ज़्यादा बहितरु हूंदो। फ्रूट हुनखे तमामु घणो इस्तेमालु करणु घुरिजे, तमामु पपीतो मां चवंदो आहियां त तमामु हिकिड़ो बहितरु हूंदो आहे मैदे जे लाइ ऐं जिगर जे मराज़नि जे लाइ। आलू बुखार तमामु जेको आहे सो बहितरु आहे ऐं इन सां बि जेको आहे सो काफ़ी सारो हुनखे जेको आहे सो फ़ाइदो पहुची सघे थो। पर जेके चवंदुसि त रूबरू ॾेखारे त वधीक बहितरु आहे,
1: वधीक बहितरु थींदो। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जीअं मेहरापुर FM 94 जो ही आवाज़ तव्हांजे समाज में पहुचे पियो। बिल्कुलु डॉक्टर साहिबु, जेका ॻाल्हि कई हिन वक़्तु त हाई ब्लड प्रेशर खां लो ब्लड प्रेशर इंतिहाई ख़तरनाक हूंदो आहे, छो जो लो ब्लड प्रेशर में घटि ब्लड प्रेशर में इंसान जॾहिं बेहोश थी वञे थो त उनजो रिकवर थियणु ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे। हीअ कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, ॾिसो कॉल जी तरफ़ वेंदासीं, किथां जो कॉलर हूंदो। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर, ख़ुशि आहियो?
1: वाह अलहमदिल्ला, केरु साहिबु पियो ॻाल्हाए मुंहिंजा साईं? ख़ुशि आमदी चवनि था। मज़हर हुसैन साहिबु ठीकु आहियो? छा पुछंदा मुंहिंजा साईं डॉक्टर साहिब खां? बसि मादो गरम थी वियो आहे, रहंदो गर्मी वरी मादो गरम, पोइ कुझु वणे कोन, हाणे छा कयूं, काॾे वञूं
2: पोइ?
1: ॾस बि जाम आहे, दवा बि जाम आहे, रुगो माण्हू इस्तेमालु करे। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु वेठो आहे कोटड़ी कबीर 8 किलोमीटर मेहरापुर, 10 मिंटनि में डायरेक्ट मेहरापुर वधण बुटा पेट्रोल पंप जे बिल्कुलु साम्हूं प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक। ॿुधनि साईं, हिन जो इलाजु मौजूदु आहे अलहमदिल्ला। हुन जो अॼु त डॉक्टर साहिब जो मौज़ू ई इहो एच पाइलरी मादे जी तकलीफ़, एच पाइलरी थींदी मादे जी तकलीफ़ जे करे आहे, पहिरियों शुरूआती मादे जी तकलीफ़ थींदी आहे, उनखां बाद में अॻिते हली हली जॾहिं असीं उहो केयर नाहियूं कंदा, तवजो नाहियूं ॾींदा, पोइ वञी एच पाइलरी थींदी
2: आहे।
1: ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ, ॿुधो FM ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो।
0: जी बिल्कुलु, हिकु त जेको आहे सो मादे जो मां पहिरें ॻाल्हि ॿुधाई त खोड़ सारी वजूहात हूंदियूं आहिनि। स्मोकिंग बि माण्हू घणा कंदा आहिनि, चांहि जो इस्तेमालु घणो कंदा आहिनि, गर्म शयूं घणियूं खाईंदा आहिनि, या हार्ड वर्किंग घणनि जी हूंदी आहे डिप्रेशन जे करे, ऐं जेको आहे सो घणे खाइण जे करे, वर्किंग न करण जे करे, घणनि जो ऑफिशियली वर्क हूंदो आहे उते ई खाई उते ई वेठा हूंदा आहिनि, त इन जे करे बि मानी सही हज़म न थींदी आहे, उन जे करे बि जेको आहे सो मैदो ब्लूमिंग फाले फुलजी वेंदो आहे ऐं पोइ उहा तकलीफ़ एसिडिटी थी वेंदी आहे। सो इन जे करे जेको आहे सो बहितरु आहे त हर खाधे खां बाद में सौंफ चूसणु तमामु ज़रूरी आहिनि। रोज़ाना राति जो अधु चमची सौंफ जी, अधु चमची जीरो, अधु चमचो जाण पाणी में काढ़े, पाणी में छाणे तव्हां विझी रखी छॾियो सुबुह जो, उन में काढ़े ऐं छाणे, उहो काढ़ो जेको आहे सो तमामु बहितरु आहे, जेको मादे खे पीअण सां जेको आहे सो जेके बि हाज़मे जो सिरिश्तो आहे उनखे हू बिल्कुलु सही करे छॾियो आहे इन जे करे। ऐं उनखां अलावा जेकॾहिं कब्ज़ बि रहे थो त रोज़ाना राति जो नीम गरम खीर में इस्पंगुल जो साशे वठी आहे, इस्पंगुल जो छिलको जेको हूंदो आहे उहो चमची राति जो खीर में विझी ऐं उहो इस्तेमालु कनि, उन सां बि मादो थधो बि रहंदो ऐं हाज़मो बि अवांजो बहितरु रहंदो, कब्ज़ खां बि तव्हां बची सघंदो। पर गॾो गॾु इहे सिर्फ़ु हिकिड़ी खाइण जी हद ताईं बहितरु आहे, लेकिन इन जे लाइ एहतियात तमामु ज़रूरी आहे। हिकु त जीअं मां पहिरियां ॻाल्हि कई त चांहि जो इस्तेमालु घटि, ॻाढ़ो मिर्च बंदि तरियल शइ जोशो इहो थींदो आहे जो माण्हू ॿाहिरि निकिरे थो बर्गर बारबिक्यू अहिड़े क़िस्म जूं मुर्गनि ग़िज़ाऊं या कुझु बिरयानी वग़ैरह इहे शयूं घणियूं खाइण सां तकलीफ़ वधंदी आहे। इन जे करे इन जी जॻह ते थधियूं शयूं, खीर जो इस्तेमालु, फ्रूट जो इस्तेमालु करणु तमामु ज़रूरी आहे। ऐं जीअं मां पहिरियां ॻाल्हि कई त खाधो खाई ऐं पाणी यकदमि न पीजे, पाणी अधु कलाकु मानी खां अॻे पीअणु घुरिजे ऐं मानी खां कलाक खां बाद में पाणी पीअणु घुरिजे, इन सां वधीक जेको आहे सो यानी अव्हांखे रिलीफ़ मिली सघे थो। जी सर,
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ तव्हांजे समाज ते पहुचे पियो। प्रोग्राम में कॉल जी तरफ़ वेंदासीं, हिकु कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, बहरहाल कॉल ड्रॉप थी चुकी आहे। प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु, 0301-91-8851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे, अव्हां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबितो करे सघो था, 0301-91-8851। डॉक्टर साहिबु, हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछरु, आचार ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वगे ताई जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधनपोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीजन जो इलाज कंदा आइन हर जुमे छंछर आई आचर ते यानी हफ्ते जा टे डी चेकअप फीस डॉक्टर साहब जी बिल्कुल फ्री होंगी है बिल्कुल मुफ्त होंगी है जुमो छंछर आई आचर यानी हफ्ते जा टे डी चेकअप फीस बिल्कुल मुफ्त है बिल्कुल फ्री है तुम डॉक्टर साहब के कें भी वक्त दिखारे सको था हर अरबा खमीस जुमो छंछर आई आचर आई सूमर यानी हफ्ते जा छह डी अवे बुधाइंदा हलो तो अंगारे वाले डी क्लिनिक बंद होंगी है डॉक्टर साहब जी प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब मुख्तलिफ़ बीमार जो माहिर डॉक्टर है कदें भी अवे मायूस ना थियणो का भी बीमारी लाइलाज ना मुख्तलिफ़ बीमार जहाँ माहिर डॉक्टर है पिते की पथरी है गुर्दे की पथरी मसान की पथरी पायल्स नक की हडी वधियल है गले जहाँ गुदूद उन्होंने बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज किया वे तो प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब सिंध जो मशहूर मारूफ डॉक्टर पंजाब का वी कर बलोचिस्तान का वी कर पूरी सिंध का डॉक्टर साहब वट मरीज इंदा रहा है कॉलर लाइन से मौजूद है दिसो किथां जो कॉलर होंदो
3: अस्सलाम वालेकुम कह रहे किथां गादा
2: दिल्ली से आया लाखा रोड
3: छा पूछना चाहिंदा डॉक्टर साहब का
2: ये मोर कब्ज दे रहे माना
3: जी
2: कब्ज
3: ही थी रहे अच्छा ठीक है एफएम बदो डॉक्टर साहब आपने बताया तो
0: जी सही साॻी मादे जी मसाइल आहिनि ऐं मादे जे करे ई जेको आहे सो जॾहिं मादो अव्हांजो सही वर्क न कंदो आहे त इन जे करे ई अव्हांखे कब्ज़ ऐं कब्ज़ अव्हांखे ख़बर आहे त हर मर्ज़ जी माउ जेको आहे सो सॾियो वेंदो आहे इन जे करे कब्ज़ जा बि खोड़ सारा सबबु आहिनि वॾे में वॾो सबबु हिकु त राति देरि ताईं जागणु निंड जो सही जेको आहे सो न हुजणु ऐं ॿियूं के अहिड़ियूं मेडिसिन्स माण्हू एंटीबायोटिक्स वग़ैरह या कुझु का अहिड़ी बीमारी लॻियल हूंदी आहे कुझु को दवाऊं दवाउनि जा साइड इफेक्ट्स जे करे बि जेको आहे सो कब्ज़ रहंदो आहे ऐं चांवर जो इस्तेमालु ज़्यादा हुजण जे करे खीर न पीअण जे करे बि इन जे करे खीर जो इस्तेमालु पंहिंजे रूटीन में आणे उनजी दवा होम्योपैथिक में थींदी आहे तव्हां बिल्कुलु रूबरू ॾेखारे सघो था
3: हीअ काल लाइन ते मौजूदु आहे काल चैनल सां केरु आहे अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
3: केरु आहे किथां गादा
2: साईं मां खेरपुर खां
3: छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहब खां
2: डॉक्टर साहब खां इहो पुछण था चाहियूं केॾीमहिल हमरा अॻे माना दिमाग़ में सूर थो पवे
3: अच्छा उमिरि घणी आहे उमिरि साईं
1: 36 साल अच्छा ठीकु आहे अध मथे में सूर थो पए उहो बि खावे पथे में वरी पाण नथो ॻाल्हाए तोखे थो चए भला ज़बान कोन अथसि छा
0: मैग्रीन पेन इनखे चइबो आहे यानी हिकु पासे ॾांहुं ॿिए पासे ॾे जेको सूरु वञे त माइग्रेट मां निकितल हूंदो आहे यानी माण्हू जेको आहे मैग्रीन पेन इनखे चइबो आहे पोइ चाहे कंहिंखे सॼे पासे बि पइजी सघे थो कंहिंखे खॿे पासे बि पइजी सघे थो अहिड़े पेशंट खे जॾहिं तकलीफ़ वधी वेंदी आहे त पोइ ईअं तकलीफ़ महसूसु थींदी आहे ॼण मथे में हथोड़ा लॻनि पिया ऐं अंधेरे में तकलीफ़ हुनजी वधंदी आहे ऐं मिठाण खाइण सां हुनजी तकलीफ़ वधंदी आहे ज़्यादा ॻाल्हाइण सां हुनजी तकलीफ़ वधंदी आहे इन जे करे उनजी दवा जेको आहे सो मेडिकल में केतिरी बि सिर्फ़ु आराम खां सवाइ ॿी का बि टेबलेट दवाई हुनखे न ॾींदा आहिनि ऐं उहा बिंग सिर्फ़ु टेम्पररी टाइम लाइ हूंदी आहे को बि उनजो इलाज न आहे असां वटि अलहमदिल्ला अलाह ताला जा करोड़े अहसान आहिनि इन मर्ज़ जे बारे में बि असां वटि व्यूज़ मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं इन मर्ज़ जो बि असां कामयाबु हद ताईं 101% असां 10% इलाजु कयो आहे ऐं कामयाबु वियो आहे कंहिं बि पेशंट खे ऐं ख़ासि करे इहा अलामत औरतुनि में बि ज़्यादा थींदी आहे मर्दनि में बि थींदी आहे लेकिन औरतुनि में कुझु ज़्यादा ई थींदी आहे उन जूं बि वजूहत आहिनि लेकिन हिन अदे खे जेकॾहिं इहा तकलीफ़ आहे त मां उनखे सिर्फ़ु मशवरो इहो ॾींदुसि त ॿी दवा खे छॾे करे होम्योपैथिक हुनजी ट्रीटमेंट कराए इनशा ताला कुझु ई अरसे में इहो अदो ख़ुदि अव्हांखे पाण व्यूज़ ॿुधाईंदो त मुंहिंजी तकलीफ़ छॾे वई आहे अलाह जे हुकुम सां
1: ख़तमु थी वियो डॉक्टर साहब आख़िर में मां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा ऐं आउं चाहींदुसि त तव्हां जेके ॾींहुं वेहो था क्लिनिक ते उहो बि दोस्तनि खे ॿुधायो पंहिंजो नंबर बि नोट कराए छॾियो कहिड़े कहिड़े टाइम मां असां राबितो करे सघनि था डॉक्टर साहब
0: जेसिताईं क्लिनिक जो शेड्यूल टाइम अव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर ज़रूरु ॿुधाईंदासीं हफ़्ते जा छह ॾींहं जुमो छंछर आचर सूमर अरबा खमीस अंगारे जो डी क्लिनिक असि बंद होंगी है। इन में हफ्ते जहा टे ढी असकअप फीस फ्री होंगी है। जुमे जो डी छंछर जो डी आचर जो डी अलबत् दवा मरीज के पाँच वी पवी है। अड़े तरीके से टाइमिंग जी है सुबह जो 10 बजे का शाम जो 5 बजे तई क्लिनिक की एड्रेस जी होंगी है कोटड़ी रोड सामू वधरपुटा पेट्रोल पंप जो सो मेहरापुर शहर यो जरूर याद कंदा। आखिर में पैगाम सभी दोस्तों के लिए खास कर यंगर्स के लिए यही है त माँ पी जो जेरो है उन तमाम जो है सो गनीमत है उनकी खिदमत जरूर कंदा करो। माँ पी की खिदमत करण से माँ के पेरन के हेठा जन्नत आई तुम बुध ही होंद लेकिन माँ पी की खिदमत करण से भी अवा के न सिर्फ जन्नत मिली बल्कि अवा जो सारे तकलीफू हैं वे खत्म थी वी वही मेहरबानी दुआन में जरूर याद
1: तमाम घड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब तुम असो कीमती वक्त दिनो। प्रोफेसर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन साहब असाजे स्टूडियो में मौजूद हुआ जो सेहत बाबत मालूमत दई रहा हुआ। प्रोग्राम जो भी वक्त पे अचे तो पैं पुजाणी की तरफ वे पो वक्त जो एहसास तेजे कर सभी दोस्त का अस माजरत भी वा जिनके कॉल्स जिन शामिल ना कर तमाम घड़ी कॉल्स होंदू आन प्रोग्राम में इन अजको प्रोग्राम जो भी वक्त पे अचे तो पुजाणी से जैं भी दुआन के लिए हथ खो तो असेंजे दुआन में जरूर याद रखो। बे प्रोग्राम से ींदा इजाजत अल्लाह निगहबान अल्लाह वाहिद।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पर ईरान अवाम के तहत से ईरान अड़ी ताकत बणजी उभरियो जे दुनिया के हैरान कर छो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सुभाणे खां 28 अगस्त ताईं बरतानिया जो सरकारी दौरो कंदो। पढ़े तर्जुमान मूजिब इसहाक़ डार बरतानवी पढ़ेई वज़ीर समेत ॿियनि आला अमलदारनि सां मुलाकातूं कंदो। मुलाकातनि में सोमालिया में हर सवाल पाकिस्तानियुनि जो मामिलो उथारियो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी नून लीग जे सदर नवाज़ शरीफ़ सां लाहौर में मुलाकात। मुल्क जी सियासी सूरतहाल ते ख़ालनि जी ॾे वठि। मुलाकात में पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ बि शरीक़।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 10 का शाम 5 वगे तीन मरीजन जो इलाज कंदा हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कर वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमन इस्तेकाम बाबत पाकिस्तानी कोशिशन जो तसलसल आहे। गुज़िरियल ॾींहुं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं ईरानी परडे वज़ीर अब्बास अराग़ची विच में फोन ते राब्तो थियो, जंहिं दौरान ख़ते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। ईरान ख़िलाफ़ अमरीका जी माशी जंग में मदद कंदड़ मुल्कनि जे मुफ़ादनि खे निशानो बणायो वेंदो। ईरान जी क़ौमी सलामती काउंसिल जे सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमरीका पंहिंजी सिफ़ातकारी ऐं ॻाल्हियुनि सां धोखो कयो। पूरी दुनिया ॼाणे चुकी आहे त डोनाल्ड ट्रंप हिकु बेवकूफ़ शख़्स आहे। मका माहिदे बाबति सवाल ते मोहसिन रज़ाई चयो त माहिदे सां ज़ाहिर थिए थो त अमरीका इन्हनि मुल्कनि खे आगाह करे छॾियो आहे त हू ख़ितो छॾणु चाहे थो। ईरान जे सदर मसूद पेशिकियान चयो आहे त दुश्मन ईरान खे वेनेज़ुएला बणाइण जो सोचियो, पर ईरानी अवाम जे इतिहाद सां ईरान अहिड़ी ताक़त बणिजी उभरियो जंहिं दुनिया खे हैरान करे छॾियो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सुभाणे खां 28 अगस्त ताईं बरतानिया जो सरकारी दौरो कंदो। परडे तर्जुमान मूजिबि इसहाक डार बरतानी परडे वज़ीर समेत ॿियनि आला अमलदारनि सां मुलाक़ातूं कंदो। मुलाक़ातनि में सोमालिया में यरतमाल पाकिस्तानियुनि जो मामिलो थारियो वेंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी नून लीग जे सदर नवाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात। लाहौर में मुलाक़ात थी आहे। मुल्क जी सियासी सूरत हाल ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। मुलाक़ात में पंजाब जे वज़ीर आला मरियम नवाज़ भी शरीफ। जे यू आई एफ जे सरबराह मौलाना फज़ल रहमान चयो आहे त दिफ़ाई ताक़त मुल्क ऐं रियासत जी ज़रूरत आहे। पाकिस्तान जी मज़बूत दिफ़ाई कुवत जा क़ाइल आहियूं। पिशावर में वर्कर कन्वेंशन खे ख़िताब कंदे मौलाना फज़ल रहमान चयो त आइन में आहे त क़ुरान ऐं सुनत जी रोशनी में ई आइन ठाहियो वेंदो। हुकमराननि जो आइन ते अमल न करणु उन्हनि जी कोताही आहे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त पीटीआई बानी पंहिंजी भेण नोरीन नियाज़ी सां मुलाक़ात में सुहेल आफरीदी या क़यादत बाबति का बि ॻाल्हि नाहे कई। नोरीन नियाज़ी मुलाक़ात मां ख़ुशि हुई, कुझु ॻाल्हियूं ज़ाहिर नथियूं करे सघजनि। मुलाक़ात बाबति बेबुनियाद ख़बरूं अची रहियूं आहिनि। नोरीन नियाज़ी पीटीआई बानी खे मुलाक़ात दौरान कयल ॻाल्हियूं ॿाहिर न करण जी बि ख़ातिरी कराई हुई। रावलपिंडी ऐं इस्लामाबाद में गुज़िरियल राति तेज़ बरसाति सबबि केतिरा इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया। रोड रस्ता पाणी हेठि, खेतनि इलाइक़नि में पाणी घरनि में दाख़िल थी वियो। मुल्तान, बनू, सवात ऐं ॿियनि इलाइक़नि में बि बरसाति। कराची में मौसम जुड़ाली, मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बूंदाबांदी सबबि मौसम ख़ुशगवार। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 8 ॼणा हयाती विञाए वेठा। सोल्जर बाज़ार, मलीर, आयशा मंज़िल, बिन कासिम टाउन ऐं ॿियनि इलाइक़नि में रोड हादसा। ट्रैफ़िक पुलिस मूजिबि कराची में हलंदड़ साल मुख़्तलिफ़ रोड हादसनि में 603 हयातियूं ज़ाया थियूं। 7,467 माण्हू ज़ख़्मी थिया। हेवी ट्रैफ़िक हादसनि में फोत थियल शहरियुनि जो अंगु 184 आहे। خاتون اول آصفا بڈو زرداری پارا راولپنڈی میں حنا جاوید جی مبینہ قتل تے دکھ جو اظہار۔ حنا جاوید جی مبینہ قتل تے سوگوار خاندان سان تعزیت ہمدردی جو اظہار۔ آصفا بڈو جو چون ہے تا افسوسناک واقعے جی مکمل شفاف جانچ کرائی ونے، ذمہ وار ماڈن کے قانون موجب انجام تائیں پہنچائے، مثال قائم کی ونے، عورتن دے تحفظ ایں دوہن جی روک تھام لائے اسرائتا قدم کرن انتہائی ضروری ہے۔ خانپور میں برسان پانی کے وارے تاں بن دورین میں جھیڑو، فائرنگ میں نوجوان قتل۔ گھوٹ عبد الکریم گڈانی میں گڈانی برادری جی بن دورین میں جھیڑو، فائرنگ کے نتیجے میں 25 ورین جو حسن علی پٹ عبد الواحد گڈانی مار جی ہو۔ مقتول جو لاش تعلق ایرپور ماتھیلو برسان بے رحم پٹ ماں کے کرندر زنجیرن سان بدھی چھڈیو۔
2: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
3: अस्सलाम वालेकुम सामेईन, तव्हां ॿुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु मां आहियां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंडअप में अज अव बुझी सकंदा। हैदराबाद में हजारे मानुन जो वहदत सिंध मार्च, धरती जे इंच इंच जी हिफाजत कबी, अगवाणन जो खिताब। सिंध जा 6,220 स्कूल ज़बून करार, पढ़ाई बंद, शागिर्द मुतबादिल स्कूलन ॾांहुं मोकिलण जो हुकुम। दादूअ में 3 महीननि जो ॿार 1.5 लख में मुबैना विकिरो, पीउ ते इल्ज़ाम, अमर जूं मीडिया अॾोदाहूं। मीरपुर ख़ास में 46 सेकेंडरी स्कूल टीचर भर्ती, आईडीज़ बि अलाट थी वियूं। हैदराबाद सखर मोटरवे खां अॻु पंजाब में नओं मनसूबो, सिंध वफ़ाक जे ॿिटे मयार ते एतिराज़ वारे छॾियो। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, पोरियतनि जी महिनत, तबकाती फ़र्क़ ऐं समाजी तब्दीलीअ जी जिदोजहद। सिंध एक्शन कमेटी पारां सिंध जे विरागे ऐं वसीलनि ते वधीक वालार वारनि साज़िशुनि ख़िलाफ़ काल्ह हैदराबाद में कासमाबाद पूनम चौक खां वहदत सिंध मार्च कयो वियो। मार्च वाधूवा रोड नसीब नगर चौक खां थींदो, वाधूवा गेट ते पहुची जलसे जी सूरत इख़्तियार करे वियो। मार्च में सिंध एक्शन कमेटी में शामिल जमातुनि समेत सियासी, कौमपरस्त ऐं तरक्की पसंद पार्टियुनि जे हज़ारे कारकुननि शिरकत करे सिंध जो विरागो नामंज़ूर, सिंध जे वसीलनि ते वालार नामंज़ूर जा ज़ोरदार नारा हयां। अॻवाणनि ख़िताब कंदे चयो त सिंध जी तारीख़ ऐं जाग्राफ़ी हैसियत बचाइण जे लाइ तहरीक जी ही पहिरीं शुरूआत जो मरहलो आहे। सिंध जा किरोड़े माण्हू रोडनि ते निकिरी ईंदा ऐं पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त करे ॾेखारींदा। हुननि चयो त सिंध धरतीअ जा वारस ऐं नौजवान न रुगो सिंध पर धरतीअ जा वसीला बि बचाईंदा। हीअ हुकमरान सिंध जो विरागो करण जा ख़्वाब ॾिसण छॾे ॾियनि। हिननि वधीक चयो त वहदत सिंध तारीख़ी मार्च पंहिंजे वतन ऐं धरतीअ सां अहद वफ़ा जो ॾींहुं मल्हाए सिंध दुश्मन हुकमराननि खे पैगाम ॾेई छॾियो आहे त सिंध जा गैरतमंद माण्हू सिंध जी विरासत कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदा। तालीम खाते पारां सिंध जे 6,220 स्कूलनि खे ज़बून करार ॾेई पढ़ाई बंदि करण जो हुकुम जारी करे छॾियो आहे। अख़्तियारनि मूजिबि मॉनसून जे मौसम दौरान ज़बून हाल इमारतुनि जे शागिर्दनि खे वेझनि स्कूलनि में मुंतक़िल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। उन ॾसमी तालीम खाते डिप्टी कमिश्नरनि खे चयो आहे त उहे ज़बून हाल इमारतुनि वारनि स्कूलनि जे वेझो मुतबादिल स्कूल ॻोल्हनि त जीअं शागिर्दनि खे उते मुंतक़िल करे सघिजे। खाते पारां उहो बि ॿुधायो वियो आहे त ज़बून हाल स्कूलनि जी मरम्मत कॾहिं शुरू ऐं कॾहिं मुकमल थींदी, शागिर्दनि मुतबादिल स्कूलनि मां पंहिंजे स्कूलनि ॾांहुं कॾहिं वापसि ईंदा। ज़बून हाल इमारतुनि वारा उहे स्कूल सूबे जे 30 ज़िलनि में आहिनि। ज़बून हाल इमारतुनि जो सभ खां वधीक अंगु बदीन, मीरपुर ख़ास ऐं थरपारकर ज़िलनि में आहे। दादू मिटन में हिन जे मासूम ॿार खे मुबैना तौरु 1.5 लख रुपियनि एवज़ विकिरो करण जो इल्ज़ाम साम्हूं अचण बाद एस एक्शन पुलिस ॿार जे वाल सुलेमान पवार खे हिरासत में वठी मामले जी जाच शुरू करे छॾी। मुतासिर औरत पंहिंजे भाउ राशिद अली ऐं मासूम नियाणियुनि ज़ाहिदा, निदा ऐं एमन सां गॾु एहतजाज कयो ऐं ॿार जी बाज़ियाबी जे लाइ अपील कई। मुतासिर औरत पंहिंजे मुड़ुसु सुलेमान पवार ते इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त संदसि 3 महीननि जो मासूम पुटु महराज खे मुबैना तौरु हिकु निजी बैंक जे मुलाज़िम अक्सा जमाली खे 1.5 लख रुपियनि एवज़ कयो विकिरो कयो आहे। जंहिं वाके खे 1 हफ़्तो गुज़री चुको आहे पर संदसि ॿार वापसि नाहे थियो। औरत जो वधीक चवणु हो त खेसि मुबैना तौरु नशे आवर टिकियूं ॾिनियूं वयूं, जंहिं खां पोइ संदसि मासूम पुट खे संदसि मर्ज़ी ऐं ॼाण खां सवाइ मुबैना तौरु विकिरो कयो वियो। मुतासिर अमर जो चवणु हुयो त खेसि पंहिंजे ॿार जे विकिरे बाबति सख़्त ख़दशा आहिनि ऐं हू गुज़िरियल 1 हफ़्ते खां मासूम पुट जी वापसी जे लाइ दरबदर थी रही आहे। हुन अख़्तरनि खां मुतालबो कयो त मामले जी जाच कराई वञे, ॿार खे फौरी तौरु बाज़ियाब कराए खेसि जे हवाले कयो वञे। शिकायत मिलण बाद ए सेक्शन पुलिस मुतासिर औरत जे मुड़ुसु सुलेमान पवार खे हिरासत में वठी मामले जी जाच शुरू करे छॾी आहे। तालीम खाते में उस्तादनि जे जाली भर्तियुनि जो स्कैंडल ज़ाहिर, 6 ॼणनि खे ग्रेड 16 में सेकेंडरी स्कूल टीचर भर्ती करे खेनि जाली आईडीज़ बि अलाट कयूं वयूं। तालीम खाते अकाउंटेंट जनरल सिंध खे ख़तु लिखी मीरपुर ख़ास में भर्ती थियल 6 जाली उस्तादनि जूं पघारूं बंदि करणु ऐं खयल पघारुनि वारी रक़म वापसि वठण जी हिदायत कई आहे। उन सिलसिले में मीरपुर ख़ास ज़िले में ग्रेड 16 में 6 सेकेंडरी स्कूल टीचर फहद अली, अनिल कुमार, शाहरुख ख़ान, ज़ाहिद अली, अरशद अली ऐं आबदा परवीन भर्ती कया विया आहिनि। ज़रियनि मूजिबि स्कूल एजुकेशन खाते उन्हनि भर्तियुनि खे जालसाज़ी करार ॾिनो आहे। मज़े जी ॻाल्हि उहा आहे त जाली तौरु ते भर्ती कयल उस्तादनि खे पर्सनल आईडी नंबर पिणु अलाट कया विया।
खाते जी आईटी सेक्शन जाली ऑर्डर ऑफर ते बारकोड पिन लगायो। जाली बारकोड का पोए आईटी सेक्शन पारा जाली आईडी अलॉट कई वही। उस्ताद जी भर्ती जाली साबित थन का पोए खाते अकाउंटेंट जनरल सिंध के खत लिखी जाली उस्ताद जो पगारू रोकण वर्तल पगारू वापस वठण जो हिदायत दिनों आन। जाली उस्ताद के पर्सनल आईडीज के ब्लॉक किया वो है। स्कूल एजुकेशन खाते उस्ताद के जाली भर्ती कदड़ कामोरन खिलाफ का भी कार्रवाई न कई। हैदराबाद सखर मोटरवे ते कम शुरू थियण खां अॻे पंजाब में नओं वॾो मनसूबो शुरू करण ते सिंध वफाकी हुकूमत आॾो एतिराज़ उथारे छॾियो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी सदारत हेठि एकनिक इजलास में सिंध हुकूमत वफ़ाक जे मुबैना बिटे मयार ते ख़दशे जो इज़हार कयो। सिंध हुकूमत इजलास में मौक़िफ़ इख़्तियार कयो त वफ़ाक़ी हुकूमत वादे ख़िलाफ़ी करे रही आहे। सूबाई वज़ीर जाम ख़ान शोरो मुतालबो कयो त लाहौर सियालकोट 296 किलोमीटर मोटरवे खां अॻु हैदराबाद सखर मोटरवे ते कमु शुरू कयो वञे। ज़रियनि मूजिबि जाम ख़ान शोरो चयो त हैदराबाद सखर मोटरवे पुराणो ऐं इंतिहाई अहम मनसूबो आहे। केतिरा ई साल गुज़रण बावजूद ॿिनि वज़ीर आज़मनि जे वाइदनि ते अमल न थी रहियो आहे। जाम ख़ान शोरो वधीक चयो त हिकु भेरे सिंध हुकूमत ऐं सिंध जी आवाम सां कयल वाइदे जी भञ कड़ी कई पई वञे। हुन एकनिक इजलास में सवाल उथारियो त वफ़ाक़ी हुकूमत हिन मामले ते संजीदगीअ जो मुज़ाहिरो छो न करे रही आहे। काल ठारू शाह जे अलशफा मेडिकल सेंटर में औरत टिन ॿारनि खे जनम ॾिनो। ॿार सिहतमंद ऐं वालदेन में ख़ुशी जी लहर छाइजी वई। ठारू शाह नौशर फिरोज़ लिंक रोड ते वाक़े अलशफा मेडिकल सेंटर में डॉक्टर नसीम शाह वटि भंगू भेण वासी औरत सनम ज़ाल दिलदार खंड टिन पुटनि खे जनम ॾिनो। जॾहिं पुटनि जी पैदाइश ते वालदेन में ख़ुशीअ जी लहर छाइजी वई। उन मौक़े ते डॉक्टर नसीम शाह मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त माउ ऐं ॿार बिल्कुलु सिहतमंद आहिनि। जॾहिं त अहिड़ी ख़बर पवण ते सवे शहरी मेडिकल सेंटर ते पहुची विया। लाड़काणो भरिसां बकापुर थाणे जे हद ॻोठ वॾा महर रोड ते चिंचीअ ते हथियारबंदनि फायरिंग करे टिनि ॼणनि उस्ताद मोहम्मद वासण औरत ज़ाहिदा जमाली मंठार जमाली ऐं क़ुर्बान जमाली खे ज़ख़्मी करे छॾियो। इतलाउ ते पुलिस वाक़िए वारे हंधि पहुची तफ़सील वठी ज़ख़्मियुनि खे खणाए इलाज जे लाइ लाड़काणो ट्रामा सेंटर मुंतक़िल करे छॾियो, जिथे ज़ख़्मी औरत ज़ाहिदा जमाली दम ॾेई छॾियो। जॾहिं त ज़ख़्मियुनि खे तिबी इमदाद ॾिनी वई। उन मौक़े ते मक़तूला औरत जे वारिस रुखसाना जमालीअ ॿुधायो त ॻोठ गाज़ी ख़ान जतोई में तरसियल ज़ाहिदा जमालीअ जे पीउ ग़ुलाम अब्बास जानिब जमाली मुर्ता जमाली समेत ॿियनि हथियार बंदनि चिंचीअ ते फायरिंग करे ज़ाहिदा खे क़तलु करे मंठार ऐं क़ुर्बान जमाली खे ज़ख़्मी करण बाद फरार थी विया आहिनि। हुन लाड़काणे जे DIG ऐं SSP खे अपील कई आहे त वाक़े जो नोटिस वठी मुलविस हथियार बंदनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। हुन हवाले सां जवाबदार ऐं मक़तूला औरत जे विच में घरू मामिलो हलंदड़ आहे, जंहिं मामले तां अहिड़ो वाक़ियो पेश आयो आहे। ॿिए पासे पोस्टमार्टम बाद मक़तूला जे लाश वारसनि हवाले कयो वियो, जिथे लाश घर पहुचण ते घर में कोहराम मची वियो। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। इंसानी समाज जे तारीख़ खे जेकॾहिं गौर सां ॾिसजे त उहा रुगो बादशाहनि हुकुमराननि ऐं जंगनि जी तारीख़ न आहे, पर उहा महिनत वसीलनि दौलत ऐं इक़्तदार जे विर्छ जी तारीख़ पिण आहे। क़दीम दौर जी गॾियल मिल्कत वारे समाज खे ग़ुलामदारी जागीरदारी ऐं पोइ सरमाएदारी निज़ाम ताईं समाज मुसलसल तब्दील थींदो रहियो आहे। पर हिकु सवाल हर दौर में ई मौजूदु रहियो आहे, जेको माण्हू दौलत ऐं पैदावार पैदा कनि था उन्हनि खे उन दौलत ऐं फ़ैसिलनि में केतिरो हिसो हासिलु आहे। अॼु दुनिया जूं बुलंद इमारतूं, कारखाना, रोड, बंदरगाहूं, फ़सल, सनतूं, टेक्नोलॉजी ऐं रोज़मरह जी ज़िंदगी जूं बेशुमार सहूलियतूं लखे किरोड़े पोरियतनि जी महिनत जो नतीजो आहिनि। मज़दूर पंहिंजे जिस्म, ज़हन ऐं वक़्त सां समाज खे अॻिते वधाइनि था, पर केतिरनि ई हालतुनि में पैदावार कंदड़ ऐं पैदावार मां फ़ाइदो हासिल कंदड़ विच में वॾो फ़र्क़ु मौजूदु आहे। हिकु अकेलो मज़दूर शायदि महदूद ताक़त रखे, पर जॾहिं हज़ारे मज़दूर मुनज़्ज़म थियनि था त उन्हनि जी इजतमाही ताक़त हिकु वॾी मुआशी ऐं समाजी क़ुवत बणिजी सघे थी। साॻी तरह हिकु अकेलो हारी पंहिंजे मसइले सां विढ़ी सघे थो, पर मुनज़्ज़म हारी तहरीक ज़मीन, पाणी, उजरत ऐं ज़रई पॉलिसियुनि बाबति आवाज़ बुलंद करे सघे थो। उन्हीअ करे तारीख़ में पोरियतनि खे विरिहाइण बि हिकु अहम हिकमत अमली रही आहे। कॾहिं ज़ात, कॾहिं बिरादरी, कॾहिं ॿोली, नसल, इलाइक़ो या सियासी नफ़रतुनि खे बुनियादु बणाए मिनत कंदड़ माण्हुनि खे हिकु ॿिए खां परे कयो वञे थो। नतीजे में ग़रीब जो दुश्मन बणिजी वञे थो, जॾहिं त असल मुआशी ऐं समाजी ढांचे ते सवाल पोइते रहिजी वञे थो। सिंध जे हवाले सां पोरियतुनि जो सवाल अञा ताईं वधीक वसी आहे त हिते मज़दूर ऐं हारीअ जो मसइलो रुगो उजरत जो मसइलो न आहे, पर ज़मीन, पाणी, कुदरती वसीलनि,
रोज़गार तालीम सिहत ऐं सकाफ़ती सुञाणप ऐं सियासी अख़्तियार सां बि ॻंढियल आहे। सिध जी तारीख़ में हारियुनि मज़दूरनि माहिगिरनि ऐं ॿियनि महिनत कंदड़ तबक़नि जी जिदोजहद उन ॻाल्हि जो सबूत आहिनि त हीउ ख़ितो रुॻो हुकुमराननि जी तारीख़ नाहे पर अवाम ऐं पोरियतुनि जी जिदोजहद जी बि तारीख़ पिणु आहे। आलमी सतह ते बि सनती इनकलाब खां पोइ मज़दूर तहरीकुनि 8 कलाक कमु, मुनासिब उजरत, यूनियन ठाहिणु, महफ़ूज़ कमु करण वारो माहौल ऐं ॿियनि बुनियादी हक़नि जे लाइ डिघी जिदोजहद कई। पर अॼु जे दौर अॻु खां मुख़्तलिफ़ आहे। टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशियत ऐं मसनू ज़हानत पैदावार जा नवां दरवाज़ा खुलिया आहिनि। साॻे वक़्तु रोज़गार जी गैर यकीनी, ठेकेदारी निज़ाम, घटि उजरत, महांगाई ऐं दौलत जे वधंदड़ गैर बराबरी जहिड़ा मसला पिणु मौजूदु आहिनि। अॼु पूरे जो मतिलबु सिर्फ़ु कारखाने में कमु कंदड़ मज़दूर न आहे। ऐप ते कमु कंदड़ ड्राइवर, डिलीवरी राइडर, ऑफिस जो मुलाज़िम, सहाफ़ी, उस्ताद, फ्रीलांसर, नंढो हारी, माहिगीर ऐं पंहिंजे महिनत सां गॾु सफ़र कंदड़ हर माण्हू जदीद पोरियत समाज जो हिसो आहे। उन ई करे अॼु जी ज़रूरत हिकु अहिड़े नए इजतमाई सोच जी आहे जेका नफ़रत ऐं तशद्दुद बदिरां बराबरी, जमहूरियत, समाजी इंसाफ़ ऐं मुआशी हक़नि ते क़ाइमु हुजे।

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300-00-27234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
0: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
0: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372-0242-460100।
4: अस्सलाम वालेकुम अदा।
5: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा।
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
4: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
5: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी,
6: 0301-399-2836।
0: आई मोहम्मद उमेर गोरी, 0319-1550-724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सकंदा हैदराबाद में हजारे मानुन जो वहदत सिंध मार्च धरती जे इंच इंच जी हिफाजत कबी अगवाणन जो खिताब सिंध जा 6,220 स्कूल जबून करार पढ़ाई बंद शागिर्द मुतबादिल स्कूलन ॾांहुं मोकिलण जो हुकुम दादूअ में टिनि महीननि जो ॿार 1.5 लख में मुबैना विकिरो पीउ ते इल्ज़ाम अमर जूं मीडिया अॾोदाहूं मीरपुर ख़ासि में 46 सेकेंडरी स्कूल टीचर भर्ती आईडीज़ बि अलाट थी वियूं हैदराबाद सखर मोटरवे खां अॻु पंजाब में नओं मनसूबो सिंध वफ़ाक जे ॿिटे मयार ते एतिराज़ वारे छॾियो ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा पोरियतनि जी महिनत तबकाती फ़र्क़ ऐं समाजी तब्दीलीअ जी जिदोजहद सिंध एक्शन कमेटी पारां सिंध जे विरागे ऐं वसीलनि ते वधीक वालार वारनि साज़िशुनि ख़िलाफ़ काल्ह हैदराबाद में कासमाबाद पूनम चौक खां वहदत सिंध मार्च कयो वियो मार्च वाधूवा रोड नसीब नगर चौक खां थींदो वाधूवा गेट ते पहुची जलसे जी सूरत इख़्तियार करे वियो मार्च में सिंध एक्शन कमेटी में शामिल जमातुनि समेत सियासी कौमपरस्त ऐं तरक़ी पसंद पार्टियुनि जे हज़ारे कारकुननि शिरकत करे सिंध जो विरागो नामंज़ूर सिंध जे वसीलनि ते वालार नामंज़ूर जा ज़ोरदार नारा हया अॻवाणनि ख़िताब कंदे चयो त सिंध जी तारीख़ ऐं जाग्राफ़ी हैसियत बचाइण जे लाइ तहरीक जो ही पहिरीं शुरूआत जो मरहलो आहे सिंध जा किरोड़े माण्हू रोडनि ते निकिरी ईंदा ऐं पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त करे ॾेखारींदा हुननि चयो त सिंध धरतीअ जा वारस ऐं नौजवान न रुगो सिंध पर धरतीअ जा वसीला बि बचाईंदा ही हुकुमराननि सिंध जो विरागो करण जा ख़्वाब ॾिसण छॾे ॾियनि हिननि वधीक चयो त वहदत सिंध तारीख़ी मार्च पंहिंजे वतन ऐं धरतीअ सां अहद वफ़ा जो ॾींहुं मल्हाए सिंध दुश्मन हुकुमराननि खे पैगाम ॾेई छॾियो आहे त सिंध जा गैरतमंद माण्हू सिंध जी विरासत कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदा तालीम खाते पारां सिंध जे 6,220 स्कूलनि खे ज़बून करार ॾेई पढ़ाई बंदि करण जो हुकुम जारी करे छॾियो आहे अख़्तियारनि मूजिबि मॉनसून जे मौसम दौरान ज़बून हाल इमारतुनि जे शागिर्दनि खे वेझनि स्कूलनि में मुंतक़िल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे उन ॾस में तालीम खाते डिप्टी कमिश्नरनि खे चयो आहे त उहे ज़बून हाल इमारतुनि वारनि स्कूलनि जे वेझो मुतबादिल स्कूल ॻोल्हिनि त जीअं शागिर्दनि खे उते मुंतक़िल करे सघिजे खाते पारां उहो बि ॿुधायो वियो आहे त ज़बून हाल स्कूलनि जी मरमत कॾहिं शुरू ऐं कॾहिं मुकमल थींदी शागिर्दनि मुतबादिल स्कूलनि मां पंहिंजे स्कूलनि ॾांहुं कॾहिं वापसि ईंदा ज़बून हाल इमारतुनि वारा उहे स्कूल सूबे जे 30 ज़िलनि में आहिनि ज़बून हाल इमारतुनि जो सभ खां वधीक अंगु बदीन मीरपुर ख़ासि ऐं थरपारकर ज़िलनि में आहे दादू मिटनि में हिननि जे मासूम ॿार खे मुबैना तौरु 1.5 लख रुपियनि एवज़ विकिरो करण जो इल्ज़ाम साम्हूं अचण बाद ए सेक्शन पुलिस ॿार जे वालिद सुलेमान पवार खे हिरासत में वठी मामले जी जाच शुरू करे छॾी मुतासिर औरत पंहिंजे भाउ राशिद अली ऐं मासूम नियाणियुनि ज़ाहिदा निदा ऐं एमन सां गॾु एहतजाज कयो ऐं ॿार जी बाज़ियाबी जे लाइ अपील कई मुतासिर औरत पंहिंजे मुड़ुसु सुलेमान पवार ते इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त संदसि 3 महीननि जो मासूम पुटु महराज खे मुबैना तौरु हिकु निजी बैंक जे मुलाज़िम अक्सा जमाली खे 1.5 लख रुपियनि एवज़ कयो विकिरो कयो आहे जंहिं वाकिए खे हिकु हफ़्तो गुज़री चुको आहे पर संदसि ॿार वापसि नाहे थियो औरत जो वधीक चवणु हो त खेसि मुबैना तौरु नशे आवर टिकियूं ॾिनियूं वयूं जंहिं खां पोइ संदसि मासूम पुट खे संदसि मर्ज़ी ऐं ॼाण खां सवाइ मुबैना तौरु विकिरो कयो वियो मुतासिर अमर जो चवणु हुयो त खेसि पंहिंजे ॿार जे विकिरे बाबति सख़्तु ख़दशा आहिनि ऐं हू गुज़िरियल हिकु हफ़्ते खां मासूम पुट जी वापसीअ जे लाइ दरबदर थी रही आहे हुन अख़्तरनि खां मुतालबो कयो त मामले जी जाच कराई वञे ॿार खे फौरी तौरु बाज़ियाबु कराए खेसि जे हवाले कयो वञे शिकायत मिलण बाद ए सेक्शन पुलिस मुतासिर औरत जे मुड़ुसु सुलेमान पवार खे हिरासत में वठी मामले जी जाच शुरू करे छॾी आहे तालीम खाते में उस्तादनि जे जाली भर्तियुनि जो स्कैंडल ज़ाहिर 6 ॼणनि खे ग्रेड 16 में सेकेंडरी स्कूल टीचर भर्ती करे खेनि जाली आईडीज़ बि अलाट कयूं वयूं तालीम खाते अकाउंटेंट जनरल सिंध खे ख़तु लिखी मीरपुर ख़ासि में भर्ती थियल 6 जाली उस्तादनि जूं पघारूं बंदि करणु ऐं खयल पघारुनि वारी रक़म वापसि वठण जी हिदायत कई आहे उन सिलसिले में मीरपुर ख़ासि ज़िले में ग्रेड 16 में 6 सेकेंडरी स्कूल टीचर फहद अली अनिल कुमार शाहरुख ख़ान ज़ाहिद अली अरशद अली ऐं आबदा परवीन भर्ती कया विया आहिनि ज़रियनि मूजिबि स्कूल एजुकेशन खाते उन्हनि भर्तियुनि खे जालसाज़ी करार ॾिनो आहे मज़े जी ॻाल्हि उहा आहे त जाली तौरु ते भर्ती कयल उस्तादनि खे पर्सनल आईडी नंबर पिणु अलाट कया विया
खाते जी आईटी सेक्शन जाली ऑर्डर ऑफर ते बारकोड पिन लगायो। जाली बारकोड का पोए आईटी सेक्शन पारा जाली आईडी अलॉट कई वही। उस्ताद जी भर्ती जाली साबित थन का पोए खाते अकाउंटेंट जनरल सिंध के खत लिखी जाली उस्ताद जो पगारू रोकण वर्तल पगारू वापस वठण जो हिदायतू दिनू आइन। जाली उस्ताद जे पर्सनल आईडीज के ब्लॉक कयो वियो आहे। स्कूल एजुकेशन खाते उस्ताद जे जाली भर्ती कंदड़ कामोरन खिलाफ का भी कार्रवाई नाहे कई। हैदराबाद सखर मोटरवे ते कम शुरू थियण खां अॻे पंजाब में नओ वॾो मनसूबो शुरू करण ते सिंध वफाकी हुकूमत आॾो एतिराज़ उथारे छॾियो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी सदारत हेठि एकनिक इजलास में सिंध हुकूमत वफ़ाक़ जे मुबैना ॿिटे मयार ते ख़सियत जो इज़हार कयो। सिंध हुकूमत इजलास में मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो त वफ़ाक़ी हुकूमत वादे ख़िलाफ़ी करे रही आहे। सूबाई वज़ीर जाम ख़ान शोरो मुतालबो कयो त लाहौर सियालकोट 296 किलोमीटर मोटरवे खां अॻु हैदराबाद सखर मोटरवे ते कमु शुरू कयो वञे। ज़रियन मूजिबि जाम ख़ान शोरो चयो त हैदराबाद सखर मोटरवे पुराणो ऐं इंतिहाई अहम मनसूबो आहे। केतिरा ई साल गुज़रण बावजूदु ॿिनि वज़ीर आज़मनि जे वाइदनि ते अमल न थी रहियो आहे। जाम ख़ान शोरो वधीक चयो त हिकु भेरे सिंध हुकूमत ऐं सिंध जी आवाम सां कयल वाइदे जी भञकड़ी कई पई वञे। हुन एकनिक इजलास में सवाल उथारियो त वफ़ाक़ी हुकूमत हिन मामले ते संजीदगीअ जो मुज़ाहिरो छो न करे रही आहे। काल्ह ठारू शाह जे अलशफ़ा मेडिकल सेंटर में औरत टिन ॿारनि खे जनम ॾिनो। ॿार सिहतमंद ऐं वालदेन में ख़ुशी जी लहर छाइजी वई। ठारू शाह नौशर फिरोज लिंक रोड ते वाक़े अलशफ़ा मेडिकल सेंटर में डॉक्टर नसीम शाह वटि भंगू भेण वासी औरत सनम ज़ाल दिलदार खंड टिन पुटनि खे जनम ॾिनो। जॾहिं त पुटनि जी पैदाइश ते वालदेन में ख़ुशीअ जी लहर छाइजी वई। उन मौक़े ते डॉक्टर नसीम शाह मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त माउ ऐं ॿार बिल्कुलु सिहतमंद आहिनि। जॾहिं त अहिड़ी ख़बर पवण ते सभई शहरी मेडिकल सेंटर ते पहुची विया। लाड़काणो भरिसां बकापुर थाणे जे हद ॻोठ वॾा महर रोड ते चिंकीअ ते हथियारबंदनि फायरिंग करे टिनि ॼणनि उस्ताद मोहम्मद वासिण औरत ज़ाहिदा जमाली मंठार जमाली ऐं कुर्बान जमाली खे ज़ख़्मी करे छॾियो। इतलाह ते पुलिस वाकिए वारे हंधि पहुची तफ़सील वठी ज़ख़्मियुनि खे खणाए इलाज जे लाइ लाड़काणो ट्रामा सेंटर मुंतकिल करे छॾियो, जिथे ज़ख़्मी औरत ज़ाहिदा जमाली दम ॾेई छॾियो। जॾहिं त ज़ख़्मियुनि खे तिबी इमदाद ॾिनी वई। उन मौक़े ते मक़तूला औरत जे वारिस रुखसाना जमालीअ ॿुधायो त ॻोठ गाज़ी ख़ान जतोईअ में तरसियल ज़ाहिदा जमालीअ जे पीउ ग़ुलाम अब्बास जानब जमाली मुर्ता जमाली समेत ॿियनि हथियारबंदनि चिंकीअ ते फायरिंग करे ज़ाहिदा खे क़तलु करे मंठार ऐं कुर्बान जमाली खे ज़ख़्मी करण बाद फरार थी विया आहिनि। हुन लाड़काणे जे DIG ऐं SSP खे अपील कई आहे त वाक़िए जो नोटिस वठी मुलविस हथियारबंदनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। हुन हवाले सां जवाबदार ऐं मक़तूला औरत जे विच में घरू मामिलो हलंदड़ आहे, जंहिं मामले तां अहिड़ो वाक़ियो पेश आयो आहे। ॿिए पासे पोस्टमार्टम बाद मक़तूला जे लाश वारसन हवाले कयो वियो, जिथे लाश घर पहुचण ते घर में कोराम अची वियो। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। इंसानी समाज जे तारीख़ खे जेकॾहिं गौर सां ॾिसजे त उहा रुगो बादशाहनि हुकुमराननि ऐं जंगनि जी तारीख़ न आहे, पर उहा महिनत वसीलनि दौलत ऐं इक़्तदार जे विर्छ जी तारीख़ पिणु आहे। क़दीम दौर जी गॾियल मिल्कत वारे समाज खे ग़ुलामदारी जागीरदारी ऐं पोइ सरमाएदारी निज़ाम ताईं समाज मुसलसल तब्दील थींदो रहियो आहे। पर हिकु सवाल हर दौर में ई मौजूदु रहियो आहे, जेको माण्हू दौलत ऐं पैदावार पैदा कनि था उन्हनि खे उन दौलत ऐं फ़ैसलनि में केतिरो हिसो हासिलु आहे। अॼु दुनिया जूं बुलंद इमारतूं, कारखाना, रोड, बंदरगाहूं, फ़सल, सनतूं, टेक्नोलॉजी ऐं रोज़मर्रा जी ज़िंदगी जूं बेशुमार सहूलियतूं लखे किरोड़े पोरियतनि जी महिनत जो नतीजो आहिनि। मज़दूर पंहिंजे जिस्म, ज़हन ऐं वक़्त सां समाज खे अॻिते वधाइनि था, पर केतिरनि ई हालतुनि में पैदावार कंदड़ ऐं पैदावार मां फ़ाइदो हासिल कंदड़ विच में वॾो फ़र्क़ु मौजूदु आहे। हिकु अकेलो मज़दूर शायदि महदूद ताक़त रखे, पर जॾहिं हज़ारे मज़दूर मुनज़्ज़म थियनि था त उन्हनि जी इजतमाई ताक़त हिकु वॾी मुआशी ऐं समाजी क़ुवत बणिजी सघे थी। साॻी तरह हिकु अकेलो हारी पंहिंजे मसइले सां विढ़ी सघे थो, पर मुनज़्ज़म हारी तहरीक ज़मीन, पाणी, उजरत ऐं ज़रई पॉलिसियुनि बाबति आवाज़ बुलंद करे सघे थो। उन्हीअ करे तारीख़ में पोरियतनि खे विरिहाइण बि हिकु अहम हिकमत अमली रही आहे। कॾहिं ज़ात, कॾहिं बिरादरी, कॾहिं ॿोली, नसल, इलाइक़ो या सियासी नफ़रतुनि खे बुनियादु बणाए मिनत कंदड़ माण्हुनि खे हिकु ॿिए खां परे कयो वञे थो। नतीजे में ग़रीब जो दुश्मन बणिजी वञे थो, जॾहिं त असल मुआशी ऐं समाजी ढांचे ते सवाल पोइते रहिजी वञे थो। सिंध जे हवाले सां पोरियतुनि जो सवाल अञा ताईं वधीक वसी आहे त हिते मज़दूर ऐं हारीअ जो मसइलो रुगो उजरत जो मसइलो न आहे, पर ज़मीन, पाणी, कुदरती वसीलनि,
रोज़गार तालीम सिहत ऐं सकाफ़ती सुञाणप ऐं सियासी अख़्तियार सां बि गुंझियल आहे। सिंध जी तारीख़ में हारियुनि मज़दूरनि माहिगिरनि ऐं ॿियनि महिनत कंदड़ तबक़नि जी जिदोजहद उन ॻाल्हि जो सबूत आहिनि त हीउ ख़ितो रुॻो हुकुमराननि जी तारीख़ नाहे पर अवाम ऐं पुरियतुनि जी जिदोजहद जी बि तारीख़ पिणु आहे। आलमी सतह ते बि सनती इनकलाब खां पोइ मज़दूर तहरीकुनि 8 कलाक कमु मुनासिब उजरत यूनियन ठाहिणु महफ़ूज़ कमु करण वारो माहौल ऐं ॿियनि बुनियादी हक़नि जे लाइ डिघी जिदोजहद कई। पर अॼु जे दौर अॻु खां मुख़्तलिफ़ आहे। टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशियत ऐं मसनू ज़हानत पैदावार जा नवां दरवाज़ा खुलिया आहिनि। साॻे वक़्तु रोज़गार जी गैर यकीनी, ठेकेदारी निज़ाम, घटि उजरत, महांगाई ऐं दौलत जे वधंदड़ गैर बराबरी जहिड़ा मसला पिणु मौजूदु आहिनि। अॼु पूरे जो मतिलबु सिर्फ़ु कारखाने में कमु कंदड़ मज़दूर न आहे। ऐप ते कमु कंदड़ ड्राइवर, डिलीवरी राइडर, ऑफिस जो मुलाज़िम, सहाफ़ी, उस्ताद, फ्रीलांसर, नंढो हारी माहिगीर ऐं पंहिंजे महिनत सां गॾु सफ़र कंदड़ हर माण्हू जदीद पोरियत समाज जो हिसो आहे। उन ई करे अॼु जी ज़रूरत हिकु अहिड़े नए इतमाही सोच जी आहे जेका नफ़रत ऐं तशद बदिरां बराबरी, जमहूरियत, समाजी इंसाफ़ ऐं मुआशी हक़नि ते क़ाइमु हुजे।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569 खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद ठरी रोड मेहरापुर 03005569
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 03013803743
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा। हैदराबाद में हजारे माण्हुनि जो वहदत सिंध मार्च, धरतीअ जे इंच इंच जी हिफाज़त कबी, अॻवाणनि जो ख़िताब। सिंध जा 6,220 स्कूल ज़बून करार, पढ़ाई बंदि, शागिर्द मुतबादिल स्कूलनि ॾांहुं मोकिलण जो हुकुम। दादूअ में 3 महीननि जो ॿारु 1.5 लख में मुबैना विकिरो, पीउ ते इल्ज़ाम, अमर जूं मीडिया आरोदाहूं। मीरपुर खास में 46 सेकेंडरी स्कूल टीचर भर्ती, आईडीज बि अलाट थी वियूं। हैदराबाद सखर मोटरवे खां अॻु पंजाब में नओ मनसूबो, सिंध वफ़ाक जे ॿिटे मयार ते एतिराज़ वारे छॾियो। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा, पोरियतनि जी महिनत, तबकाती फ़र्क़ ऐं समाजी तब्दीलीअ जी जिदोजहद। सिंध एक्शन कमेटी पारां सिंध जे विरागे ऐं वसीलनि ते वधीक वालार वारनि साज़िशुनि ख़िलाफ़ काल्ह हैदराबाद में कासमाबाद पूनम चौक खां वहदत सिंध मार्च कयो वियो। मार्च वाधूवा रोड नसीब नगर चौक खां थींदो, वाधूवा गेट ते पहुची जलसे जी सूरत इख़्तियार करे वियो। मार्च में सिंध एक्शन कमेटी में शामिल जमातुनि समेत सियासी, कौमपरस्त ऐं तरक़ी पसंद पार्टियुनि जे हज़ारे कारकुननि शिरकत करे सिंध जो विरागो नामंज़ूर, सिंध जे वसीलनि ते वालार नामंज़ूर जा ज़ोरदार नारा हयां। अॻवाणनि ख़िताब कंदे चयो त सिंध जी तारीख़ ऐं जाग्राफ़ी हैसियत बचाइण जे लाइ तहरीक जो ही पहिरीं शुरूआत जो मरहलो आहे। सिंध जा किरोड़े माण्हू रोडनि ते निकिरी ईंदा ऐं पंहिंजे वतन जी हिफ़ाज़त करे ॾेखारींदा। हुननि चयो त सिंध धरतीअ जा वारस ऐं नौजवान न रुगो सिंध पर धरतीअ जा वसीला बि बचाईंदा। ही हुकुमरान सिंध जो विरागो करण जा ख़्वाब ॾिसण छॾे ॾियनि। हिननि वधीक चयो त वहदत सिंध तारीख़ी मार्च पंहिंजे वतन ऐं धरतीअ सां अहद वफ़ा जो ॾींहुं मल्हाए सिंध दुश्मन हुकुमराननि खे पैगाम ॾेई छॾियो आहे त सिंध जा गैरतमंद माण्हू सिंध जी विरासत कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदा। तालीम खाते पारां सिंध जे 6,220 स्कूलनि खे ज़बून करार ॾेई पढ़ाई बंदि करण जो हुकुम जारी करे छॾियो आहे। अख़्तियारनि मूजिबि मॉनसून जे मौसम दौरान ज़बून हाल इमारतुनि जे शागिर्दनि खे वेझनि स्कूलनि में मुंतकिल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। उन ॾस में तालीम खाते डिप्टी कमिश्नरनि खे चयो आहे त उहे ज़बून हाल इमारतुनि वारनि स्कूलनि जे वेझो मुतबादिल स्कूल ॻोल्हनि त जीअं शागिर्दनि खे उते मुंतकिल करे सघिजे। खाते पारां उहो बि ॿुधायो वियो आहे त ज़बून हाल स्कूलनि जी मरम्मत कॾहिं शुरू ऐं कॾहिं मुकमल थींदी, शागिर्दनि मुतबादिल स्कूलनि मां पंहिंजे स्कूलनि ॾांहुं कॾहिं वापसि ईंदा। ज़बून हाल इमारतुनि वारा उहे स्कूल सूबे जे 30 ज़िलनि में आहिनि। ज़बून हाल इमारतुनि जो सभ खां वधीक अंगु बदीन, मीरपुर खास ऐं थरपारकर ज़िलनि में आहे। दादू मिटुनि में हिननि जे मासूम ॿार खे मुबैना तौरु 1.5 लख रुपियनि एवज़ विकिरो करण जो इल्ज़ाम साम्हूं अचण बाद एस एक्शन पुलिस ॿार जे वाल सुलेमान पवार खे हिरासत में वठी मामले जी जाच शुरू करे छॾी। मुतासिर औरत पंहिंजे भाउ राशिद अली ऐं मासूम नियाणियुनि ज़ाहिदा, निदा ऐं एमन सां गॾु एहतजाज कयो ऐं ॿार जी बाज़ियाबी जे लाइ अपील कई। मुतासिर औरत पंहिंजे मुड़ुसु सुलेमान पवार ते इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त संदसि 3 महीननि जो मासूम पुटु महराज खे मुबैना तौरु हिकु निजी बैंक जे मुलाज़िम अक्सा जमाली खे 1.5 लख रुपियनि एवज़ कयो विकिरो कयो आहे। जंहिं वाके खे 1 हफ़्तो गुज़री चुको आहे पर संदसि ॿार वापसि नाहे थियो। औरत जो वधीक चवणु हो त खेसि मुबैना तौरु नशे आवर टिकियूं ॾिनियूं हुयूं, जंहिंखां पोइ संदसि मासूम पुट खे संदसि मर्ज़ी ऐं ॼाण खां सवाइ मुबैना तौरु विकिरो कयो वियो। मुतासिर अमर जो चवणु हुयो त खेसि पंहिंजे ॿार जे विकिरे बाबति सख़्त ख़दशा आहिनि ऐं हू गुज़िरियल 1 हफ़्ते खां मासूम पुट जी वापसीअ जे लाइ दरबदर थी रही आहे। हुन अख़्तरनि खां मुतालबो कयो त मामले जी जाच कराई वञे, ॿार खे फौरी तौरु बाज़ियाब कराए खेसि जे हवाले कयो वञे। शिकायत मिलण बाद एस एक्शन पुलिस मुतासिर औरत जे मुड़ुसु सुलेमान पवार खे हिरासत में वठी मामले जी जाच शुरू करे छॾी आहे। तालीम खाते में उस्तादनि जे जाली भर्तियुनि जो स्कैंडल ज़ाहिर, 6 ॼणनि खे ग्रेड 16 में सेकेंडरी स्कूल टीचर भर्ती करे खेनि जाली आईडीज बि अलाट कयूं वयूं। तालीम खाते अकाउंटेंट जनरल सिंध खे ख़तु लिखी मीरपुर खास में भर्ती थियल 6 जाली उस्तादनि जूं पघारूं बंदि करणु ऐं खयल पघारुनि वारी रक़म वापसि वठण जी हिदायत कई आहे। उन सिलसिले में मीरपुर खास ज़िले में ग्रेड 16 में 6 सेकेंडरी स्कूल टीचर फहद अली, अनिल कुमार, शाहरुख ख़ान, ज़ाहिद अली, अरशद अली ऐं आबदा परवीन भर्ती कया विया आहिनि। ज़रियनि मूजिबि स्कूल एजुकेशन खाते उन्हनि भर्तियुनि खे जालसाज़ी करार ॾिनो आहे। मज़े जी ॻाल्हि उहा आहे त जाली तौरु ते भर्ती कयल उस्तादनि खे पर्सनल आईडी नंबर पिणु अलाट कया विया।
खाते जी आईटी सेक्शन जाली ऑर्डर ऑफर ते बारकोड पिन लगायो। जाली बारकोड का पोए आईटी सेक्शन पारा जाली आईडी अलॉट कई वही। उस्ताद जी भर्ती जाली साबित थन का पोए खाते अकाउंटेंट जनरल सिंध के खत लिखी जाली उस्ताद जो पगारू रोकण वर्तल पगारू वापस वठण जो हिदायत दिनों आन। जाली उस्ताद के पर्सनल आईडीज के ब्लॉक किया वो है। स्कूल एजुकेशन खाते उस्ताद के जाली भर्ती कदड़ कामोर खिलाफ का भी कार्रवाई ना कई। हैदराबाद सखर मोटरवे ते कम शुरू थियण खां अॻे पंजाब में नओं वॾो मनसूबो शुरू करण ते सिंध वफाकी हुकूमत आॾो एतिराज़ उथारे छॾियो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी सदारत हेठि एकनिक इजलास में सिंध हुकूमत वफ़ाक़ जो मुबैना ॿिटे मयार ते ख़सियत जो इज़हार कयो। सिंध हुकूमत इजलास में मौक़ुफ़ इख़्तियार कयो त वफ़ाक़ी हुकूमत वादे ख़िलाफ़ी करे रही आहे। सूबाई वज़ीर जाम ख़ान शोरो मुतालबो कयो त लाहौर सियालकोट 296 किलोमीटर मोटरवे खां अॻु हैदराबाद सखर मोटरवे ते कमु शुरू कयो वञे। ज़रियनि मूजिबि जाम ख़ान शोरो चयो त हैदराबाद सखर मोटरवे पुराणो ऐं इंतिहाई अहम मनसूबो आहे। केतिरा ई साल गुज़रण बावजूद ॿिनि वज़ीर आज़मनि जे वाइदनि ते अमल न थी रहियो आहे। जाम ख़ान शोरो वधीक चयो त हिकु भेरे सिंध हुकूमत ऐं सिंध जी आवाम सां कयल वाइदे जी भञकड़ी कई पई वञे। हुन एकनिक इजलास में सवाल उथारियो त वफ़ाक़ी हुकूमत हिन मामले ते संजीदगीअ जो मुज़ाहिरो छो न करे रही आहे। काल्ह ठारू शाह जे अलशफ़ा मेडिकल सेंटर में औरत टिनि ॿारनि खे जनमु ॾिनो। ॿार सिहतमंद ऐं वालदेन में ख़ुशीअ जी लहर छाइजी वई। ठारू शाह नौशरफ रोड लिंक रोड ते वाक़े अलशफ़ा मेडिकल सेंटर में डॉक्टर नसीम शाह वटि भंगू भेण वासी औरत सनम लाल दिलदार खंड टिनि पुटनि खे जनमु ॾिनो। जॾहिं त पुटनि जी पैदाइश ते वालदेन में ख़ुशीअ जी लहर छाइजी वई। उन मौक़े ते डॉक्टर नसीम शाह मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त माउ ऐं ॿार बिल्कुलु सिहतमंद आहिनि। जॾहिं त अहिड़ी ख़बर पवण ते सभई शहरी मेडिकल सेंटर ते पहुची विया। लाड़काणू भरिसां बकापुर थाणे जे हद ॻोठ वॾा महर रोड ते चिंचीअ ते हथियारबंदनि फायरिंग करे टिन ॼणनि उस्ता मोहम्मद वासण औरत ज़ाहिदा जमाली मठार जमाली ऐं कुर्बान जमाली खे ज़ख़्मी करे छॾियो। इतलाह ते पुलिस वाकिए वारे हंधु पहुची तफ़सील वठी ज़ख़्मियुनि खे खणाए इलाज जे लाइ लाड़काणू ट्रामा सेंटर मुंतकिल करे छॾियो, जिथे ज़ख़्मी औरत ज़ाहिदा जमाली दम ॾेई छॾियो। जॾहिं त ज़ख़्मियुनि खे तिबी इमदाद ॾिनी वई। उन मौक़े ते मक़तूला औरत जे वारिस रुखसाना जमालीअ ॿुधायो त ॻोठ गाज़ी ख़ान जतोईअ में तरसियल ज़ाहिदा जमालीअ जे पीउ ग़ुलाम अब्बास जानब जमाली मुर्ता जमाली समेत ॿियनि हथियार बंदनि चिंचीअ ते फायरिंग करे ज़ाहिदा खे क़तलु करे मंठार ऐं कुर्बान जमाली खे ज़ख़्मी करण बाद फरार थी विया आहिनि। हुन लाड़काणे जे DIG ऐं SSP खे अपील कई आहे त वाक़िए जो नोटिस वठी मुलविस हथियार बंदनि खे गिरफ़्तार करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। हुन हवाले सां जवाबदार ऐं मक़तूला औरत जे विच में घरू मामिलो हलंदड़ आहे, जंहिं मामले तां अहिड़ो वाक़ियो पेश आयो आहे। ॿिए पासे पोस्टमार्टम बाद मक़तूला जे लाश वारसनि हवाले कयो वियो, जिथे लाश घर पहुचण ते घर में कोहराम अची वियो। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। इंसानी समाज जे तारीख़ खे जेकॾहिं गौर सां ॾिसजे त उहा रुगो बादशाहनि हुकुमराननि ऐं जंगनि जी तारीख़ न आहे, पर उहा महिनत वसीलनि दौलत ऐं इक़्तदार जे विर्छ जी तारीख़ पिणु आहे। क़दीम दौर जी गॾियल मिल्कत वारे समाज खे ग़ुलामदारी जागीरदारी ऐं पोइ सरमाएदारी निज़ाम ताईं समाज मुसलसल तब्दील थींदो रहियो आहे। पर हिकु सवाल हर दौर में ई मौजूदु रहियो आहे, जेको माण्हू दौलत ऐं पैदावार पैदा कनि था उन्हनि खे उन दौलत ऐं फ़ैसलनि में केतिरो हिसो हासिलु आहे। अॼु दुनिया जूं बुलंद इमारतूं, कारखाना, रोड, बंदरगाहूं, फ़सल, सनतूं, टेक्नोलॉजी ऐं रोज़मरह जी ज़िंदगी जूं बेशुमार सहूलियतूं लखें किरोड़े पोरियतनि जी महिनत जो नतीजो आहिनि। मज़दूर पंहिंजे जिस्म, ज़हन ऐं वक़्त सां समाज खे अॻिते वधाइनि था, पर केतिरनि ई हालतुनि में पैदावार कंदड़ ऐं पैदावार मां फ़ाइदो हासिल कंदड़ विच में वॾो फ़र्क़ु मौजूदु आहे। हिकु किलो मज़दूर शायदि महदूद ताक़त रखे, पर जॾहिं हज़ारे मज़दूर मुनज़्ज़म थियनि था त उन्हनि जी इजतमाई ताक़त हिकु वॾी मुआशी ऐं समाजी क़ुवत बणिजी सघे थी। साॻी तरह हिकु अकेलो हारी पंहिंजे मसइले सां विढ़ी सघे थो, पर मुनज़्ज़म हारी तहरीक ज़मीन, पाणी, उजरत ऐं ज़रई पॉलिसियुनि बाबति आवाज़ बुलंद करे सघे थो। उन्हीअ करे तारीख़ में पोरियतनि खे विरिहाइण बि हिकु अहम हिकमत अमली रही आहे। कॾहिं ज़ात, कॾहिं बिरादरी, कॾहिं ॿोली, नसल, इलाइक़ो या सियासी नफ़रतुनि खे बुनियादु बणाए मिनत कंदड़ माण्हुनि खे हिकु ॿिए खां परे कयो वञे थो। नतीजे में ग़रीब जो दुश्मन बणिजी वञे थो, जॾहिं त असल मुआशी ऐं समाजी ढांचे ते सवाल पोइते रहिजी वञे थो। सिंध जे हवाले सां पुरियतुनि जो सवाल अञा ताईं वधीक वसीउ आहे त हिते मज़दूर ऐं हारीअ जो मसइलो रुगो उजरत जो मसइलो न आहे, पर ज़मीन, पाणी, कुदरती वसीलनि,
रोज़गार तालीम सेहत सकाफ़ती सुजाणप सियासी अख्तियार सां भी गुज़िरियल आहे। सिंध की तारीख में हारियुनि मज़दूरनि माहिगीरनि ॿियनि महिनत कंदड़ तबकनि जी जिदोजहद उन ॻाल्हि जो सबूत आहिनि त हीउ ख़ितो रुॻो हुकुमराननि जी तारीख़ नाहे पर अवाम ऐं पोरियतुनि जी जिदोजहद जी बि तारीख़ पिणु आहे। आलमी सतह ते बि सनती इनकलाब खां पोइ मज़दूर तहरीकुनि 8 कलाक कमु मुनासिब उजरत यूनियन ठाहिणु महफ़ूज़ कमु करण वारो माहौल ऐं ॿियनि बुनियादी हक़नि जे लाइ डिघी जिदोजहद कई। पर अॼु जे दौर अॻु खां मुख़्तलिफ़ आहे। टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशियत ऐं मसनूई ज़हानत पैदावार जा नवां दरवाज़ा खुलिया आहिनि। साॻे वक़्तु रोज़गार जी गैर यकीनी, ठेकेदारी निज़ाम, घटि उजरत, महांगाई ऐं दौलत जे वधंदड़ गैर बराबरी जहिड़ा मसला पिणु मौजूदु आहिनि। अॼु पूरे जो मतिलबु सिर्फ़ु कारखाने में कमु कंदड़ मज़दूर न आहे। ऐप ते कमु कंदड़ ड्राइवर, डिलीवरी राइडर, ऑफिस जो मुलाज़िम, सहाफ़ी, उस्ताद, फ्रीलांसर, नंढो हारी माहिगीर ऐं पंहिंजे महिनत सां गॾु सफ़र कंदड़ हर माण्हू जदीद पोरियत समाज जो हिसो आहे। उन ई करे अॼु जी ज़रूरत हिकु अहिड़े नए इजतमाई सोच जी आहे जेका नफ़रत ऐं तशद बदिरां बराबरी, जमहूरियत, समाजी इंसाफ़ ऐं मुआशी हक़नि ते क़ाइमु हुजे।

0: हुयो हिन वक्त जो सिंध राउंडअप बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलह निगहबान।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।